हाँ जो बुरे काम करे और उसके गुनाह हर तरफ से उसको घेर लें, तो ऐसे लोग दोजख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें जलते रहेंगे।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6।
1: सुनते रहिए।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। इस प्रोग्राम के जरिए हम फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के असातिज़ा से एकेडेमिया, फैकल्टी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग स्किल, मीडिया ट्रेंड्स, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म, आर्ट, पीआर, एंटरप्रेन्योरशिप और जैसे अहम मौजूदात पर गुफ्तगू करते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान खास मौजूद हैं, उनकी शख्सियत का तारुफ करवाते हुए मैं ज़रूर ये कहूँगी कि वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं है बल्कि वो एक फिल्म मेकर हैं, और बहुत ही काबिल फिल्म मेकर हैं जो बहुत अवार्ड याफ्ता हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से हकीकत में कहानियों को किस तरह से नरेट किया जा सकता है, सोच से हकीकत तक का सफर बड़े अच्छे से कैमरे के थ्रू, कैमरे के लेंस के थ्रू अपने नाजरीन तक पहुंचाया। अस्सलाम वालेकुम सर।
4: वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
3: सर उमर सईद कुरैशी फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है, लेक्चरर हैं और साथ बीएस कोऑर्डिनेटर भी हैं। सर आपका सफर एज अ फिल्म मेकर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से सोचा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कैमरा और लेंस और कैमरे की आंख क्या कहती है ये दिखाना है?
4: मेरे ख्याल से इट ऑल स्टार्टेड जब मैं छोटा था, और मैंने एक दफ़ा जो एक ब्लरी मेमोरी मेरे माइंड में आती है कि मेरी वालदा हमारी पिक्चर्स लिया करती थी और उन्हें बड़ा शौक था, वो लाहौर से एक रील लाती थी और वो अपने कैमरे में डालती थी। उसके बाद जब वो पिक्चर लेती थी तो मुझे हमेशा से याद है, वो कहती थी कि आप दीवार से ज़रा दूर खड़े हों, पौधों से ज़रा दूर खड़े हों। शायद उन्हें एक्चुअल वर्ल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड का तो नहीं पता था, बट उन्हें कॉन्सेप्ट का अंदाज़ा लाजमी था कि जब वो हमें खड़ा करती थी दीवार से दूर तो जो भी सनफ्लावर्स थे या दीवार थी वो हमेशा ब्लर सी आती थी। तो मुझे वो मेमोरी तब भी याद है कि बचपन में कैसे हमारी पिक्चर्स ले रही होती थी, और मुझे लगता है वही रीज़न था कि जब मैं बड़ा हुआ पहली दफ़ा एफएससी में गया, मुझे स्कॉलरशिप मिली, मुझे थोड़े पैसे मिले, तो जो मैंने पहली चीज़ ली वो मैंने अपना कैमरा लिया। और उससे पहले भी जो मेरे पास सेल फोन्स होते थे, मैं हमेशा वो सेल फोन लेता था जिसका कैमरा हमेशा अच्छा होता था, और वो कैमरे से पिक्चर्स ली, अपने पेंटियम वन में डाली और उसे एडिट किया। एक सॉफ्टवेयर होता था उस ज़माने में, डेट वॉज फोटोस्केप। तो मुझे लगता है हमेशा से मुझे शौक था नेचर कैप्चर करने का, लोगों को कैप्चर करने का, रियलिटी कैप्चर करने का।
3: तो जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, जैसे आप बता रहे थे कि आपने एफएससी किया है, तो घर वालों ने सपोर्ट किया? उन्होंने कहा नहीं कि ये क्या करने वाले हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा करके क्या कर लोगे, इसमें क्या कमा लोगे?
4: बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो केपीके के लोग हैं पंजाब में, तो शायद ये बड़ा कॉमन था मैस मीडिया, फिल्म, फोटोग्राफी, हमारे वहाँ पे दो ही शोबे समझे जाते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। तीसरा फाइन आर्ट्स वाले बच्चों को समझा जाता था कि शायद बड़ा कमज़ोर कुन जैन बच्चा है, ये ज़्यादा पढ़ नहीं सकता। तो जब मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने वालिद को बताया, तो फर्स्ट तो वो थे कि नहीं किसी अच्छी फील्ड में चले जाओ, बिजनेस में चले जाओ, कुछ और कर लो एंड ऑल दैट। लेकिन लकीली मेरे कुछ कज़न थे लाहौर में, कुछ दोस्त थे जो एनसी में पढ़ रहे थे, और जब बात की उनसे, उनने वालिद साहब को मनाया। बट नो डाउट पीयर प्रेशर, वालदैन का प्रेशर था कि कोई अच्छी फील्ड चूज़ करो, ये नई फील्ड है, इसमें पैसे नहीं है, कैरियर नहीं है, लोग इसे अच्छा देखते नहीं है, समझते नहीं है, तो वो प्रेशर तो हमेशा से था। बट मुझे लगता है मैं भी काफ़ी ज़िद्दी था और मैंने मना लिया किसी ना किसी तरह।
3: और वो यही होता है ना कि टाइम के साथ आपके पेरेंट्स समझ भी जाते हैं कि इसकी क्या कैपेसिटीज हैं और ये कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो जब आपने फिल्म मेकिंग का स्टार्ट किया तो क्या ऐसी चीज थी, क्या ऐसे पर्सन, कौन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया टू बी अ फिल्म मेकर?
4: मुझे लगता है सबसे पहले तो जो हॉलीवुड और बॉलीवुड सिनेमा था उस जमाने में कुछ चैनल्स आते थे और मैं हमेशा एक फिल्म थी, मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज, उनकी एक मूवी थी मकबूल और वो केबल पे एक दिन चली और हम बैठ के देखते थे, छुप के घर से देखते थे क्योंकि मूवीज भी नहीं देखने देते थे घर वाले। तो मकबूल मैंने पहली दफा देखी और मकबूल देख के मेरे माइंड में आया कि ये लिखता कौन है, बनाता कौन है, कैसे बनती हैं। और एक एनसीए के मेरे दोस्त थे, वो जब लाहौर से एबटाबाद आए तो मैंने उनसे पूछा कि ये फिल्म बनती कैसे है, ये लिखता कोई और बंदा है, शूट कोई और करता है, इसका साउंड कोई और करता है, एडिट कोई और करता है। तो मैंने कहा ये सारा कैसे सीखूंगा मैं। तो उनने फिर मुझे बताया कि देयर इज अ डिपार्टमेंट एनसीए में, बीएनयू सक न्यू ओपन हुई थी, तो उनने मुझे कहा वहां पे आप जाएंगे आपको सब चीजें थोड़ी थोड़ी सिखा दी जाएंगी और इन सब को कंबाइन करके फिल्म बनती है। तो मैं स्टार्ट में तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा क्योंकि मैं तो एक लाइन भी नहीं लिख सकता था। तो लेकिन कुछ फिल्म्स और कुछ डायरेक्टर्स ने मुझे इंस्पायर किया, जिसमें पहला नाम मैंने विशाल भारद्वाज लिया, दूसरा दिल से एक मूवी आई थी मणि रत्नम की, तो मणि रत्नम की मूवी मैंने देखी उस वक्त उसका एक गाना था सतरंगी, तो वो क्योंकि पहाड़ों में शूट हुआ है, मैं खुद पहाड़ों से था एंड ऑल दैट, तो मैं हमेशा पहाड़ों को देखता था, मैं कहता था यार ये गाना मैं भी कभी शूट ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा फैक्टर्स थे उस वक्त जो मैं चीजें देखता था उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि यार करनी चाहिए फिल्म मेकिंग।
3: इसमें आपको ये नहीं लगता कि आपका जो रहन सहन होता है, जो आपका कल्चर होता है, जो आपकी, जैसे आप कह रहे थे पहाड़ों से है, वो आपकी इमेजिनेशन को बड़ा बूस्टअप करता है?
4: बिल्कुल बूस्टअप करता है और यही रीजंस हैं कि अभी भी जो मूवीज मैं देखता हूँ जो कि मोस्टली पहाड़ों में बनी हुई हैं वो मुझे इंस्पायर ज्यादा करती है एज कम्पेयर टू अदर मूवीज, क्योंकि वो बचपन जिया आपने, वो रियलिटी देखी है, ऑब्जर्व किया। जिस तरह रिसेंट एक फिल्म थी लैला मजनू, वो लैला मजनू शायद इतनी अच्छी फिल्म नहीं होगी बट मुझे इसलिए अच्छी लगी पहाड़ों में शूट हुई। देयर इज अनदर फिल्म हैदर विशाल भारद्वाज की, वो उससे ज्यादा कनेक्ट मैं इसलिए कर सकता हूँ कि शायद वो पहाड़ों में शूट हुई। तो मुझे लगता है इन्फ्लुएंस तो होता ही होता है जिस कल्चर में आप पले बड़े, और उस कल्चर में हमें एक और चीज बड़ी मिलती थी, वो था सुकून और टाइम। अफरा तफरी नहीं थी जैसे कि बाकी शहरों में होती है, तो हमारा एक ही काम होता था, या तो नेचर ऑब्जर्व करना या तो लोगों को ऑब्जर्व करना। और मेरे ख्याल से फिल्म मेकिंग में ये दोनों बेसिस हैं कि आपने अपना स्टोरी वर्ल्ड कैसे बनाना है और उसमें जो अपने कैरेक्टर्स डालने हैं वो कैसे डालने हैं। तो वो मेरे ख्याल से उसी इंसान के लिए पॉसिबल है जिसने ऑब्जर्व की होंगी ये दोनों चीजें।
3: और एज अ फिल्म मेकर जब आपके स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं और वो आपको अपने आइडियाज का बताते हैं और वो कहते हैं कि हम इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं, तो एज टीचर और एज अ फिल्म मेकर कितना चैलेंजिंग होता है उनको बताना कि बेटा आप राइट डायरेक्शन में हो, या किस तरह से इसको आप ओवरऑल अपनी इमेजिनेशन को पोर्ट्रे कर सकते हो?
4: मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल चीज होती है वो होती है रियलिटी, एक तो होती है लिव्ड रियलिटी और एक होती है इमेजिनेटिव रियलिटी जो आपने किसी मूवी में देख ली। फॉर एग्जांपल मैंने कभी सरसों के खेत अगर रियलिटी में नहीं देखे, मैंने खाली उन्हें करण जौहर की फिल्म्स में देखा, तो वो रियलिटी सेकंड हैंड रियलिटी है मेरे पास और वो खाली इमेजिनेटिव चीज है, मैंने रियलिटी में देखी नहीं कि सरसों के खेत लगते कैसे हैं। तो बच्चों का मसला ये है कि वो जो उनने रियलिटी लिव की है, जो एक्सपीरियंसेस लिव किए हैं, वो उसे कभी भी स्क्रिप्ट में नहीं लाते और वो जो सेकेंडरी रियलिटी गैंग्स ऑफ वसीपुर देख लिया, मिर्जापुर देख लिया, वो चाहते हैं कि वो वाली रियलिटी लिख के लाएं जो कि बिलीवेबल नहीं बन रही होती है टाइम्स। तो मैं उन्हें पहला जो असाइनमेंट है वो वही देता हूं कि जो चीज आप डेली ऑब्जर्व कर रहे हो उसे लिखो। वो किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी जगह पे चोरी हो सकती है, किसी जगह पे लड़ाई हो सकती है। तो मुझे लगता है जो लिव रियलिटी है वो लिख अच्छे तरह से सकते हो और आप उस शूट अच्छे तरीके से कर सकते हो क्योंकि आपने वो ऑब्जर्व किया होता है, पल जिया होता है।
3: इसी के साथ लिसनर्स हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूँ मरियम इफ्तार, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आपके साथ।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद गुफ्तगु हैं वो हैं सर उमर सईद कुरैशी, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। अभी ब्रेक में जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स के लिए कितना चैलेंजिंग है और एज अ फिल्म मेकर आपके लिए कितना चैलेंजिंग है उन्हें समझाना, तो सर कोई ऐसी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो आपके करियर में आपको जिसने टफ टाइम दिया हो या जिसके बाद आपका सोच या आपके काम करने का जाविया बड़ा बदल गया?
2: मेरे ख्याल से एक फिल्म थी जो हमने की फसी भाई खान के साथ, जिनका एक बड़ा फेमस प्रोग्राम चलता है कद्दूसी साहब की बेवा। तो फसी भाई की स्क्रिप्ट जब पहली दफ़ा आई वो इतनी अच्छी सादा सलीस उर्दू थी कि वो समझते हुए हमें टाइम लगा। और मैं इससे पहले डेफिनेटली FSC तक उर्दू तो पढ़ता रहा, लेकिन काफ़ी गैप के बाद इतना अच्छा जब कोई प्रोजेक्ट आया वो मैंने पढ़ा। और वो जब पढ़ा मैंने, क्योंकि जो एक अच्छा राइटर होता है उसकी निशानी यही होती है कि जब आप उसकी स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आप इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हो चीज़ों को। तो जो फसी भाई की स्क्रिप्ट थी वो चैलेंजिंग इसलिए थी कि पहली दफ़ा इतने बड़े राइटर के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल काम किया, दूसरा फसी भाई डायरेक्ट भी कर रहे थे, सेट पे भी। मुझे लगता है वो एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जब हमने किया क्योंकि वो अंदरून लाहौर में करना था और अंदरून लाहौर की छोटी गलियों में लोग ना जमा हो जाएं, फिर जब आप कमरे में शूट कर रहे हो तो बाहर से रेडी वाले की आवाज आ रही है, कभी किस बच्चे की आवाज आ रही है, ऑल दैट। तो वो इतनी बड़ी प्रोडक्शन में जब मैंने पहली दफा शूट किया और शूट के बाद जब वो एडिट होकर सामने आया तो एक तो आपको अपने पोटेंशियल पे भी यकीन होने लगता है, आप कहते हो यार ये तो मैं कर सकता था, और फिर आप कहते हो मैं कर क्यों नहीं रहा था। तो वो प्रोजेक्ट ने मुझे लगता है हमें बड़ा कॉन्फिडेंस दिया फॉर अ रीजन के वो उसके बाद साइप्रस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक गया, वहां पे स्क्रीन हुआ, उसके बाद वो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुआ। जब यहाँ दो जगह स्क्रीन हुआ तो मुझे लगा कि यार इतनी मेहनत करके हम कोई और प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और डेफिनेटली इससे आगे भी जा सकता।
1: अच्छा, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप एक वर्ड बार बार बात कर रहे हैं एडिटिंग का, यानी एडिटर और एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्टर, इसमें डिफरेंस क्या होता है?
2: देखें, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं एडिटर, जो कि एंड रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस पूरी फिल्म का करता है। हमें पहली क्लास में फिल्म मेकिंग की पढ़ाया जाता था कि जो एडिटर होता है वो फिल्म का खुदा होता है। वो एक अच्छी शूट की हुई चीज़ को बुरा भी बना सकता है और बुरी शूट की हुई चीज़ को कमाल भी बना सकता है। तो एडिटर तो बाद में आते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सिनेमाटोग्राफी है। जो एक सिनेमाटोग्राफर होता है उसका काम अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाया जाए तो इट्स लुक एंड फील। आपको फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे भी कहूँ, आप एक क्लिप चल रहा है इंटरनेट पे, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये जब भी मेट का है, तो आप विद इन सेकेंड्स कहेंगी हाँ। मैं आपसे पूछूं क्यों, आप कहेंगी पूरी फिल्म में जो लुक एंड फील है वो सेम ही है और मैं जहां पे इसका क्लिप देखूंगी मुझे पता लग जाएगा। ये निशानी है एक अच्छे सिनेमाटोग्राफर की कि उसने अपना एक स्टोरी वर्ल्ड बनाया और वो स्टोरी वर्ल्ड लोगों को याद करवा दिया खाली अपनी लुक एंड फील के थ्रू। अब सिनेमाटोग्राफर का काम हमारे पाकिस्तान में समझा जाता है कि खाली कैमरा हैंडल करना, हालांकि सिनेमाटोग्राफर का काम यूजली कैमरा हैंडल करना नहीं होता। वो कॉम्प्लेक्स शॉट्स में तो कैमरा खुद हैंडल कर सकता है, लेकिन वो यूजली कैमरा ऑपरेटर से जो लुक एंड फील होती है डिजायर्ड किसी सीन की, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी एक सुबह है जहाँ पे दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से काम कर रहे हैं और दोनों खफा एक दूसरे से, यानी उदासी है कमरे में। अब राइटर ने तो लिख दिया, डायरेक्टर ने कहा मुझे उदासी भी चाहिए एंड एवरीथिंग, अब ये आप कैसे दिखाओगे थ्रू कलर्स, थ्रू फ्रेमिंग, थ्रू लेंस, कि कितना गैप है दोनों में, बीच में क्या चीजें हैं, क्या वो किसी बीच पे खड़े हैं, नेगेटिव स्पेस कितना है, पॉजिटिव स्पेस कितना है, कॉम्पोजिशन कैसी है। तो सिनेमाटोग्राफर राइटर की चीजों को स्क्रीन पे लेके आता है थ्रू लुक एंड फील। सिनेमाटोग्राफर के बाद फिर एडिटर के पास जाती है चीज़, और एडिटर जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई होती हैं, कुताहियां रह गई होती हैं सिनेमाटोग्राफर से, उसे समझाता है कि यहाँ पे मैं ये चाहता था 19:20 हो गया, अब आप इसे ठीक कर दें थ्रू कलर टोनिंग या थ्रू कलर ग्रेडिंग। और इसका भी डिफरेंस अक्सर स्टूडेंट पहली क्लास में पूछते हैं कि कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग का क्या डिफरेंस होता है, तो वो हमेशा जो हमें सुन भी रहे हैं उनके लिए भी यही है कि कलर करेक्शन आपकी सिंपली ओवरऑल आपकी मूवी क्या तो कूल टोन की तरफ है या तो वार्म टोन की तरफ है। बट कलर ग्रेडिंग में जब हम आते हैं हम कहते हैं जी अगर कोई बंदा बैठा हुआ है हमारे सामने वाइट के आगे वाइट शर्ट पहन के, तो वाइट के आगे वाइट शर्ट कभी भी ठीक नहीं लगेगी, बंदा प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो कलर ग्रेडिंग में हम उस वाइट शर्ट का कलर चेंज करके ब्लू कर देते हैं। अगर किसी बंदे ने रेड लिपस्टिक या किसी खातून ने लगाई हुई है और हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा लग रही है, तो हम कलर ग्रेडिंग में जाके उस लिपस्टिक को टोन डाउन कर देते हैं
1: और वो हो जाता है इजीली
2: हो जाता है। और हमने बहुत बड़े बड़े शूट्स में किया,
1: ठीक है, और इसी तरह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में क्या डिफरेंस होगा?
2: प्रोड्यूसर यूजली इन फिल्म प्रोड्यूसर यूजली करता है इस तरह कि एक तो बजट वो जहां से भी लाए, चाहे वो स्पॉन्सर्स के थ्रू लाए, किसी चीज के थ्रू लाए, उसके बाद फिल्म की मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। डायरेक्टर खाली कर ये रहा होता है कि आपके राइटर के विजन को स्क्रीन पे लाने वाला प्रोसेस सारे डायरेक्टर के पास होता है, और जो प्रोड्यूसर है वो आपका बजट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल कर रहा होता है सारी।
1: और सर अगर बात करें हम फिल्म मेकिंग की और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की, तो किसकी डायरेक्शन प्रोडक्शन बहुत चैलेंजिंग होती है और किस में बहुत ज्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किसको रियल कैमरा और वो जो रियल और रील का डिफरेंस है उसमें खत्म करना जो है वो बहुत चैलेंजिंग लगता है?
2: मुझे लगता है कि अगर मैं क्योंकि मैं खुद फिल्म ज्यादा पसंद करता हूँ, तो आप किसी डॉक्यूमेंट्री वाले से पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट्री को ही कहेगा। मुझे लगता है कि एक स्टोरी वर्ल्ड बनाना इज ज़्यादा डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू एक स्टोरी वर्ल्ड बना हुआ और उसमें जाके शूट करना, बट दोनों की डिफिकल्टीज़ अपनी अपनी है। अगर आप मुझसे पूछेंगी कि एक स्टोरी वर्ल्ड बिल्ड करना बाय फिल्म की, हम सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। जो डेफिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा सूट करती है, मुझे लगता है इट्स एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी। रियलिटी का आपने एक बबल क्रिएट करना है, और जो सिनेमा में बैठा हुआ है उसे पता है कि वो एक इल्यूजन देख रहा है, बट वो स्टिक हो गया उसके साथ क्योंकि उसे वो रियलिटी लग रही है। अब वो रियलिटी क्रिएट करना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। एज कम्पेयर टू डॉक्यूमेंट्री, आप रियलिटी में जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं और उसे फिर क्रिएटिवली ट्रीट कर रहे हैं। रियलिटी तो आपके पास बनी पड़ी है, फिल्म में तो आपने एक रियलिटी बनानी है और यकीन दिलवाना है कि ये रियलिटी है, इल्यूजन एक क्रिएट करनी है। तो मुझे लगता है कि वो इल्यूजन ऑफ रियलिटी बनाना ज़्यादा मुश्किल है
1: As compared to
2: documentary. लेकिन आप ये documentary वाले से पूछेंगे तो शायद उल्टा जवाब आएगा।
1: ऐसे ही है। और सर जब स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, आपके पास भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें अक्सर डिमांड में आप ही मिल रहे होते हैं फिल्म मेकिंग में, बच्चे चाह रहे होते हैं कि वो आपके साथ प्रोजेक्ट्स करें, तो आप ज्यादा फिल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट्स करवा रहे होते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज के भी करवा?
2: मैं एक आधा डॉक्यूमेंट्री का लाजमी पकड़ता हूँ, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उनको करवाते करवाते मेरी प्रैक्टिस भी हो रही होती है, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मैंने की भी हैं, 3 से 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा पसंद मुझे फिल्म ही है, बट डॉक्यूमेंट्री के प्रोजेक्ट्स में अपनी प्रैक्टिस के लिए भी करवा रहा होता हूँ।
1: और फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्री में कितना चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट?
2: मेरे ख्याल से चैलेंजिंग इसलिए होता है कि आप बच्चों को जितना मर्जी अच्छा समझा दो, एंड रिजल्ट जब वो लेके आते हैं वो अपनी समझ के मुताबिक लेके आ रहे होते हैं, और फिर उसे ही निखारना होता है आपने, और एंड पे सम हाउ पूछा यही जाता है कि कौन था सुपरवाइजर। चाहे वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो तब भी सुपरवाइजर, बहुत बुरा हो तो तब भी सुपरवाइजर। तो मुझे लगता है वो फिर आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ती है क्योंकि आपका नाम साथ जा रहा होता
1: है। ऐसे ही है, और इसी के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन अब एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ, और आज हमारे साथ सर उमर सईद कुरैशी हैं, और हम बड़ी मजे की गुफ्तगु कर रहे थे अभी स्टूडेंट्स और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सर मुझे ये बताएं, हम एज इन प्रोग्राम जो हमारा है फिल्म मेकिंग का, उसमें स्टूडेंट्स ऑफ फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या उनके लिए हम सपोर्ट फैक्टर्स और क्या उनको किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं।
2: मेरे ख्याल से देखा जाए तो रिसेंटली अभी एक हफ्ता पहले हमने चार सेमिनार करवाए, और उन चारों सेमिनार में जो लोग आए वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स थे और जिनने टॉप के कमर्शियल्स और फिल्म्स प्रोड्यूस की हुई थी मार्केट में। उनके साथ उनके सेशंस थे डेढ़ डेढ़ घंटे के, जो कि दो दिन चार सेशंस चलते रहे। उसके बाद मुझे लगता है ये जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो फिल्म मेकिंग में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। ये ना तो आपको सिखाता है, एट द सेम टाइम ये आपको मोटिवेट भी करता है। इन सेमिनार्स के अलावा जो हमारे पास स्टूडियो अवेलेबल है, मुझे लगता है स्टूडियो के अलावा भी रिसेंटली हमारे पास जो कैमराज आए हैं, जो बिगिनर लेवल फिल्म मेकिंग कैमराज हैं, A7 III और बाकी कैमराज इक्विपमेंट, हमारे पास साउंड का इक्विपमेंट आया है। मुझे लगता है बिगिनर लेवल फिल्म मेकर के लिए ये लैब इक्विपमेंट सफिशेंट है फिल्म में एंट्री लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली आपको बड़ा इक्विपमेंट, बड़ी लाइटें चाहिए, बट मुझे लगता है इनसे इस हद तक आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप इंडस्ट्री लैंड इजीली कर सकते हैं।
1: सर जैसे अभी आपने कमर्शियल्स की बात की, तो मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी, उसमें मेंशन था कि आपने टेक्नो, रियलमी और इन्फिनिक्स के टीवी कमर्शियल्स को प्रोड्यूस भी किया हुआ है। वो एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंट था फ्रॉम योर फिल्म मेकिंग, और वो जर्नी और ये जर्नी कैसा रहा है पूरा सफर?
2: मुझे लगता है कि जो कमर्शियल कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके हाथ पैर तो बांध देते हैं, बट आपको फाइनेंशियली बड़ा सपोर्ट करते हैं। बट जहां आप फिल्म मेकिंग में आते हैं वहां आपको मसला ये होता है, मसला तो नहीं मैं कहूँगा, क्रिएटिव फ्रीडम लाजमी होती है, बट मुझे लगता है अभी तक पाकिस्तान में वहाँ थोड़ा पैसा कम है। तो दोनों के मेरे ख्याल से अपने कॉन्स और बेनिफिट्स हैं, और अगर देखा जाए तो कमाना ज़्यादा पाकिस्तान में कॉर्पोरेट और कमर्शियल काम से ही है, और अपनी क्रिएटिव फ्रीडम के लिए लोग यूजली फिल्म मेकिंग और बाकी चीजें करते रहते हैं।
1: और सर जो आपको सुन रहे हैं उन स्टूडेंट्स को आप क्या फिल्म मेकिंग से रिलेवेंट क्या ऐसी एडवाइस और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बताना चाहेंगे कि जब वो अपने करियर का आगाज करें तो इन टिप्स और ट्रिक्स को लाजमी फॉलो करें?
2: मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज तो यह है कि फिल्म देखें ऑब्जर्वेशन से। आपको अगर आप नहीं जाके बाहर ऑब्जर्व कर सकते, चीजें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं ले रहे, ट्रैवल नहीं कर रहे, लोगों से नहीं मिल रहे, तो जो सबसे पहली चीज़ है फिल्म्स देखें और डिफरेंट जॉनराज और डिफरेंट कंट्रीज़ की फिल्म देखें। मसला यह है कि यहाँ पे सारा कमर्शियल काम देखा जाता है, हालांकि ये खाली कमर्शियल सिनेमा है, और कमर्शियल सिनेमा को अगर मैं सम अप करूँ तो इट्स लाइक अ मिक्स अचार जिसमें सब के लिए सब कुछ है। लेकिन जब आप आर्ट सिनेमा की तरफ जाते हैं जो कि स्पेसिफिकली प्योर ऑब्जर्वेशन है, सोसाइटी के मसले हैं, कल्चर के मसले हैं, वो सिनेमा देखने से आप कुछ ना कुछ लाजमी सीख रहे होते हैं। और अगर तो आप रियल लाइफ में ऑब्जर्वेशन आपकी वीक है, आप ट्रैवल नहीं करते, तो मुझे लगता है आप आर्ट सिनेमा देखें, क्योंकि मुझे लगता है देखने से जितना आप सीखते हैं, क्योंकि मैंने जब जाता हूँ शूट करने कोई भी चीज़ तो कहीं ना कहीं से मेरे माइंड में इंस्पिरेशन होती है कि मैंने फलां फिल्म देखी थी, वहाँ पे ये कॉम्पोजिशन थी, वहाँ पे शॉट इस तरह लिया हुआ था, तो आपकी विजुअल वोकेबलरी बढ़ती जाती है जब आप अच्छी फिल्म्स देखते हैं। तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स को मशवरा है कि डेली की एक फिल्म देख के सोएं।
1: और सर जब स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट करना होता है तो उनकी डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एज ए DOP वो सब चीज़ें खुद कर रहे होते हैं?
2: नहीं, मोस्टली वो हेल्प ले रहे होते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग में आपकी प्रोडक्शन के लिए आपको वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए होती है। तो जो हम एम्फसाइज करते हैं, कि एटलीस्ट एडिटिंग और डायरेक्शन आप खुद करें, DOP, लाइट, गैफर ये आप बाहर से लोग हायर कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग में इन द एंड काम डायरेक्टर ने ही करवाना है। गैफर को तो आप कहेंगे इस प्लेस पे लाइट रखे, इस डायरेक्शन में लाइट रखे, वो रख देगा। कहाँ से कट करनी है, कितनी कट करनी है, कितनी डिफ्यूज करनी है, वो डायरेक्टर का ही काम है, तो वो काम करवाता है यूजली।
1: ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल अभी का टाइम की बात की जाए तो AI ने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है, तो क्या स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोजेक्ट को इस तरह से मैनेज करना, प्रोजेक्ट को लेके चलना उतना ही आसान है, या स्टूडेंट्स जो है उसकी वजह से चीज़ों का फायदा उठाते हुए कुछ चीज़ों को कर भी रहे हैं, कुछ चैलेंजिंग भी है?
2: देखिए, अगेन AI इज़ अ गुड थिंग और होनी भी चाहिए, स्टोरी बोर्ड तक और बाकी चीज़ें आपकी हेल्प लाजमी, असिस्ट लाजमी करती है, बट AI ने वो दुनिया नहीं देखी, वो एक्सपीरियंसेस नहीं देखे, ना वो फील किए हैं जो कि एक नॉर्मल बंदा रियल लाइफ में कर सकता है। जैसा कि सिंपल एग्जांपल दूंगा, इम्तियाज अली की जितनी फिल्म्स होती हैं उसमें आप देखेंगी कि जब भी करेक्टर को हर्ट होता है लव लाइफ में या कुछ उसको धचका लगता है जिंदगी में, तो वो अकेला बैठ के खाना खा रहा होता है। अब ये चीज़ आपको एआई नहीं बता सकता, ये आपकी प्योर ऑब्जर्वेशन है कि जब बंदे का दिल दुखी होता है तो क्या क्या क्या क्या पॉसिबिलिटीज में कर सकता है। इम्तियाज अली की फिल्म में आपको मिलेगा कि वो अकेला बैठ के किसी फूड पॉइंट पे खाना खा रहा है। अब एआई आपको नहीं बता सकता, वो बताएगा शायद अमेरिका के कल्चर के हिसाब से कि हाँ जब कोई बंदा सैड होता है तो वो जाके समंदर के किनारे बैठता है, तो लाहौर में तो आपको समंदर नहीं मिलेगा, यू हैव टू फाइंड समथिंग एल्स। तो मुझे लगता है कि असिस्ट लाजमी कर सकते हैं, आप उसे बता सकते हो जी रावी किनारे बैठा हुआ है मेरा बंदा एंड ऑल दैट, अब मुझे बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके एक्शन की, तो वो लाजमी कर सकता है, असिस्ट लाजमी कर सकता है, बट जो विजन है प्योरली वो आपका ही है।
1: और क्या स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प करता है स्टूडेंट्स को AI?
2: मेरे ख्याल से करता है, असिस्ट करता है, मैं अभी हेल्प इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने खुद बड़ी स्क्रिप्ट जनरेट करवाने की कोशिश की है। हेल्प तब करता है जब आप क्लियर हो कि आपने क्या करना है। मैंने एक सीन दिखाना है तो मैं उसे बताऊंगा सीन में ये ये ये ये चीज

0: कि मैंने क्या करना है, बट उसने अपने डीओपी को समझाना था। तो मैंने कहा यही चीज आप लिखो एआई में और एक इमेज जनरेट करवाओ और यही अपने डीओपी को दिखा दो कि मुझे एग्जैक्टली ये चीज चाहिए। तो यहां तक मामला मुझे क्लियर लगता है कि जब आप क्लियर हो और आपने काम करवाना है तो आप असिस्टेंस लाजमी लो, बट प्योरली जब आप एआई के ऊपर चले जाओगे तो मेरे ख्याल से विजन आपका नहीं रहेगा।
1: और लास्ट में जो आप एडवाइस देना चाहें फिल्म मेकिंग में स्टूडेंट्स को जो स्पेसिफिकली इसको एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है?
0: मेरे ख्याल से सबसे पहले तो फिल्म्स देखें, दूसरी चीज़ डेली अगर आप इतने पैशनेट हैं जाएं पिक्चर्स लें, फ्रेमिंग बेटर करें, क्लिप शूट करें, बैठ के एडिट करें। अगर ये पैशन नहीं है और आपको ये सर दर्द लग रहा है तो मुझे लगता है फिर शायद आपको और फील्ड चूज कर लेनी चाहिए।
1: इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। बहुत शुक्रिया सर उमर सईद कुरैशी, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में आके हमें इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई फिल्म मेकिंग से रिलेवेंट, और सीखने को इतना कुछ मिला। मुझे यकीन है कि हमारे सामईन ने भी बहुत कुछ सुना होगा। नेक्स्ट वीक इसी तरह से मेरा और आपका सिलसिला जुड़ा रहेगा और मिलेंगे फकेलिटी आर्ट के साथ।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہو کمیر. آج کے اس پروگرام میں خصوصی طور پر بات ہوگی فیکلٹی آف لا میں شروع کیے جانے والے مینٹورشپ پروگرام کے اوپر، اور اس حوالے سے آج ریڈیو پر موجود ہیں ہمارے ساتھ مسٹر حسین نعیم اینڈ عبد الرحمٰن عظیم فرام فیکلٹی آف لا. آئیے پوچھتے ہیں کہ اس پروگرام کے بارے میں یہ لوگ کس طریقے سے اس کو فیکلٹی میں لے کے چل رہے ہیں، اور اس کا کیا آبجیکٹیوز ہے، اور کیا اس کا اسٹرکچر ہے. جی حسین صاحب.
4: جی وعلیکم السلام. میرا نام حسین نعیم ہے اور میں 8th سیمسٹر لا اسٹوڈنٹ ہوں. سو میں اور عبد الرحمٰن اس مینٹرشپ کمیٹی کے اندر ہیں، وی آر ممبرز آف مینٹرشپ کمیٹی.
3: آپ بتائیے عبد الرحمٰن.
5: سو آئی ایم سیمسٹر 6 اسٹوڈنٹ فرام FOL اینڈ آئی ہیو بین اے مینٹی فار 1 year اینڈ آلسو ورکنگ کرنٹلی ان مینٹرشپ کمیٹی.
3: تو یہ مینٹرشپ پروگرام ہے کیا، اور اس کا کیا مین آبجیکٹیو ہے؟
4: جی سو بیسیکلی ایک جب اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے اندر آتا ہے، فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ جب آتا ہے، تو ہی از فیسڈ ود اے لاٹ آف ڈیفیکلٹیز اینڈ چیلنجز. اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے، اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے یہ پروگرام کریٹ کیا گیا ہے، سو دیٹ جو چیلنجز وہ فیس کرتے ہیں ریلیٹنگ دیئر ریگارڈنگ دیئر اسٹڈیز، دیئر بیک گراؤنڈ اینڈ دی فاسٹ پیس اسٹڈیز آف یونیورسٹی لائف، اس کے اندر نہ صرف یہ ہے کہ ایک اسکول والا ماحول نہیں ہوتا، اس میں آپ کو یونیورسٹی کے اندر اسائنمنٹس ہوتی ہیں، آپ کے ڈفرینٹ کوئزز ہوتے ہیں، ایوری ویک ہمارے پاس ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے ایک گائیڈ کے طور پہ ہم لوگوں نے مینٹرشپ کا کیا، جس میں ایک سینئر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جونیئر اسٹوڈنٹس کو مینٹور کرتا ہے، ان کو سکھاتا ہے، ان کو ساتھ گائیڈ کرتا ہے.
3: تو یہ اتنا نوبل انیشیٹو ہے کس کا، جس کو اسٹارٹ کیا گیا فل میں؟
4: سو بیسیکلی یہ جو انیشیٹو ہے یہ اسٹارٹ کیا گیا تھا ڈاکٹر ہادی اوان، جو ہماری ڈین ہے، انہوں نے اس چیز کو اسٹارٹ کیا. اور یہ انیشیٹو اس لیے اسٹارٹ کیا گیا تھا کہ اگین جو جونیئرس ہیں، جو اسپیشلی فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے جو پرابلمس ہیں ان کو ایک راہ دکھانا، جو کہ سینئرس جس چیز سے گزر چکے ہیں وہ ان کو پراپرلی گائڈ کر سکیں اور وہ اس لائف اسٹائل کے ساتھ اپنے آپ کو کیپ اپ کر سکیں.
3: اسی پروگرام کے بارے میں جب تھوڑا میں پڑھ رہا تھا تو ایک اسٹڈی میرے سامنے آئی کہ 25% آف دا اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ ایڈمیشنز لیتے ہیں وہ بالکل اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کر پاتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کس طریقے سے یہ پروگرام جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے اس کے اندر؟
4: جی بالکل. دیکھیں جو ریسرچ ہے وہ یہی ہے کہ 25% آف دا اسٹوڈنٹس دے ایکچولی ڈراپ آؤٹ، دے ڈراپ آؤٹ آف یونیورسٹی، اور جب وہ ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں وہ دیٹ از بیکاز دے کوڈنٹ کیپ اپ. اور پیپل کم فرام ڈفرینٹ کلچرل اینڈ اکنامک بیک گراؤنڈس، تو جب وہ ایک جگہ پہ آتے ہیں یونیورسٹی کے اندر تو دے ہیو ویری مچ ڈفیکلٹیز ٹو ان کیپنگ اپ. تو اس چیز کے اندر پھر 25% جو ہیں وہ بائی دا تھرڈ سیمسٹر اور فورتھ سیمسٹر دے ایکچولی ڈراپ آؤٹ، اینڈ اور دے ہیو ٹو چینج پلیسز، دے ہیو ٹو سوئچ ڈگریز، اینڈ دے ہیو ٹو سوئچ دیئر میجرز، بیکاز دے ہیو سم سارٹ آف lack of guidance by their seniors who have already been through this.
3: So, iski koi main objectives bhi aapne set kiye hain jiske upar aap logo ne specific rehte hue is program ko execute kar rahe hain faculty mein?
4: Ji, so basically jo objectives hain is program ke wo ye hain ke jo students hain for first year and second year students, unke liye ek smooth transition kiya jaye from school life to university life. और उसके अंदर जो एकेडमिक सपोर्ट है बच्चों को जो चाहिए होती है कि अक्सर एक जिस तरह बड़ा भाई या बड़ा बहन भाई आपको जिस तरह से पढ़ाता है समझाता है कि ये इस तरह करना है आपने, इस तरह ये चीज़ पढ़नी है, इस तरह ये चीज़ नहीं पढ़नी या इसको कैसे लेके चलना है, तो वो चैलेंजेस भी आपके उसमें देखे जा रहे होते हैं। और एक बेसिकली रोल मॉडल बनने के लिए इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि एक आपका सीनियर स्टूडेंट आपका रोल मॉडल हो। और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं और जो मेंटर्स हैं, जो मेंटीज एंड मेंटर्स हैं, मेंटर्स उनके जितने भी इश्यूज हैं उनको प्रोएक्टिवली साथ देख रहे होते हैं, उनके जितने भी इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग देयर स्टडीज और देयर टीचर्स, उन सब चीज़ों को हल कर रहे होते हैं।
3: सामिन, अभी आपने सुना कि ऑब्जेक्टिव्स और क्या हैं, मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या है, अब आइए इसके SOPs क्या हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, स्ट्रक्चर क्या और इसकी हायरार्की क्या है, उसके बारे में पूछते हैं। आप अब्दुलरहमान बताइए कि इस प्रोग्राम की हायरार्की क्या है, इसमें क्या लेयर्स हैं, सबसे पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, किस तरह से जो है वो इसको लेके चला जा रहा है।
5: शहूक, इसमें बेसिकली 4 लेयर्स हैं। सबसे जो टॉप पोजीशन पर हैं वो हैं डीन, उसके बाद आते हैं सुपरवाइजर्स, उसके बाद मेंटोर और उसके बाद मेंटीज।
3: तो ये सुपरवाइजर्स, मेंटोर्स और मेंटीज होते कौन है, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है?
5: जो सुपरवाइजर्स हैं वो एक्चुअली फैकल्टी मेंटोर्स भी उन्हें कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि वो टीचिंग में पहले ही हैं, वो मतलब कोई
3: वो ऑलरेडी टीचर्स हैं।
5: यस, सो उन्हीं को हम सुपरवाइजर्स अपॉइंट कर देते हैं। उसके बाद जो मेंटोर्स हैं उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन सेट कर दी जाती हैं, जैसे रिसेंटली हमने उनका CGPA बेस्ड उनकी क्वालिफिकेशन सेट की। उसके अलावा हम उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ देखते हैं कि वो किस तरह स्टडीज़ के साथ साथ दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर पार्टिसिपेशन है उनकी, इसके साथ उनकी जो प्रॉपर गाइडेंस है कि वो किस तरह गाइड कर भी सकते हैं या नहीं मेंटीज़ को, उस बेस पे देखा जाता है।
3: और इस प्रोग्राम के कोई SOPs भी आपने ड्राफ्ट किए हैं जिसके अंडर गवर्न है सारा सिस्टम और इसको आप लेकर चल रहे हैं?
5: जी शहूक, इसके अंदर हमारी बेसिकली 4 जो हैं वो SOPs हमने ड्राफ्ट की हुई हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो हमारी एजुकेशन है कि हमने मेंटीज की एजुकेशन को किस तरह इम्प्रूव करना है। उसके अंदर सबसे पहले जो एजुकेशन के अंदर पॉइंट आता है वो हमारा गोल सेटिंग का आता है, जिसके अंदर इनिशियली जो मेंटर्स हैं वो ट्राई करते हैं कि वो जो मेंटीज हैं उनका एक गोल सेट कर दें जिस बेसिस पे वो फर्दर जो है उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर चले। सेकेंडली जो है एजुकेशन के अंदर वो रेगुलर मीटिंग्स हैं कि उनकी रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से कोई भी उन्हें मसला आ रहा है वो टाइमली उसको रिजोल्व किया जाता है। थर्डली इंडिविजुअल लर्निंग प्लान आ जाता है, जिसके अंदर हर मेंटी का जो उसका मेंटोर है उसको एक प्लान बना देता है जिसकी वजह से वो बेहतर तरीके से उसको लेकर चल सकते हैं। उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग है, जिसके अंदर उनको बताया जाता है कि कैसे जो है रिसर्च करनी है,
3: इसके अंदर कोई आप मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कोई मेंटोर्स ने अपनी भी कोर्स आउटलाइन या कुछ ऐसा डेवलप किया होता है जो वो शेयर कर रहे होते हैं अपने नोट्स या अपने एक्सपीरियंसेस किसी तरीके से जिनको हम रिसोर्स शेयरिंग के अंडर कवर करेंगे?
5: जी शहूक, इसके अंदर ये होता है कि क्योंकि अगर हम 10th सेमेस्टर की बात करें जो एज अ मेंटोर वर्क कर रहा है, उसका इतना जो लाइफ स्पैन है, उसका जो इतना एक्सपीरियंस है, उसके अंदर उन्होंने जितने पॉइंट्स पे रिसर्च की होती है कमोबेश उतने ही पॉइंट्स जो है वो मेंटीज अभी अपनी जर्नी में लेकर चल रहे होते हैं। अब जब वो उन पॉइंट्स को देखते हैं और देखते हैं कि इस पे हम रिसर्च कर चुके हैं, तो वो अपनी रिसर्च जो है वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे ये फायदा होता है कि जो मेंटीज हैं वो उस रिसर्च से फर्दर रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद आता है फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन, कि उसके अंदर हम साथ साथ ये देखते हैं कि मेंटोर जो है वो एज अ मेंटोर अपना रोल प्ले कर भी रहा है या नहीं। उसके अंदर उन्होंने लेकर चलना होता है फीडबैक्स को कि कोई मेंटोर जो है वो किस तरह अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है। फिर आ जाता है ट्रैकिंग प्रोग्रेस। सो इसके अंदर मज़ीद जो एजुकेशन के अंदर आ जाता है, उसके अंदर मेंटीज़ को इनक्रेज किया जाता है कि वो अपना जो एक होप है वो उसको मेंटेन रखें, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर का बिल्कुल एक नया सिस्टम आ जाता है कि जहाँ से वो सेमेस्टर सिस्टम में दाखिल हो रहे होते हैं और उन्होंने उसके अंदर CGPA को मेंटेन रखना होता है। उसके अंदर क्योंकि उनका पहला एक्सपीरियंस होता है तो बेशतर लोग जो हैं बेशतर मेंटिस जो हैं उसके अंदर अपना जो होप है उसको लूज कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दैट उनको इनकरेज किया जाता है.
3: बिल्कुल ठीक है. तो एजुकेशन के अलावा ऐसा कौन सी एरियाज है जिनको आप एसओपीज में कवर कर रहे हैं?
5: तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है एसओपीज में वो है स्किल्स डेवलपमेंट. उसके अंदर जो मेंटोर हैं क्योंकि हमने उनकी क्वालिफिकेशन ये रखी होती है कि वो स्टडीज के अलावा भी किसी चीज़ को साथ लेकर चल रहे हैं कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ को, तो इसके अंदर हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अपने मेंटीज को भी उस तरफ लेकर आएं क्योंकि वो इससे पहले आशना नहीं होते. उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, वो उनको बताते हैं मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे उनका इंटरेस्ट जो है वो देखा जाता है कि वो किसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो बेहतर होगा. उसके अंदर हम इन मुख्तलिफ मेंटोर्स ने जो मूड्स हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए. इसके अलावा मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं उनको एक करके मुख्तलिफ रिसर्च एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसके साथ लेकर चले ताकि जो मेंटीज़ हैं उनका इंटरेस्ट जो
3: एकेडमिक साइड की तरफ उनका इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो सके.
5: जी बिल्कुल.
3: और मजीद इसके अंदर क्या?
5: इसके अंदर प्रोफेशनल ग्रोथ आ जाती है क्योंकि वो सीनियर होते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर इंटर्नशिप और मुख्तलिफ जो गोल्स हैं अचीव किए होते हैं उस बेसिस पे वो जो अपने मेंटीज़ हैं उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में उनकी बहुत हेल्प करते हैं. इसके साथ ही
3: प्रोफेशनल ग्रोथ में वो कैसे हेल्प करते हैं कि वो अभी खुद प्रोफेशन में नहीं आए, जैसे आपने बोला है कि वो खुद स्टूडेंट्स हैं अभी, तो क्या वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या जो भी हैं वो खुद प्रोफेशनल में स्टेप इन हो चुके हुए हैं या इसको किस तरह से आप इस पॉइंट को क्लियर करते हैं?
5: जो मेंटोर्स होते हैं वो बेसिकली मुख्तलिफ इंटर्नशिप्स कर चुके होते हैं जिसके अंदर वो अपना एक इनसाइट जो है लीगल फील्ड का वो ले चुके होते हैं. एक स्टडी है और दूसरी तरफ हमारी जो लीगल फील्ड है उनमें बहुत फ़र्क है. अब उसको क्लियर करने के लिए जो मेंटोर्स हैं वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने चीज़ों को कैसे लेकर चलना है और किस पर्सपेक्टिव से एजुकेशन को और इन सब को इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है.
3: मजीद इसमें हमारे पास कोई और पॉइंट?
5: इसके अंदर एक पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल सपोर्ट है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो मेंटोर है उसका ट्रस्ट जो है वो बिल्ट होना चाहिए मेंटीज में ताकि वो अपनी जो पर्सनल इश्यूज हैं उनको डिसॉल्व करवा सके. इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी भी आ जाता है कि
3: कैसा होता है कि मेंटोर्स जो है वो जब बैठे हों और मेंटीज अपनी कोई पर्सनल चीज शेयर कर रहे हों उनके साथ
5: पर्सनल इनके अंदर वन ऑन वन मीटिंग्स होती हैं मेंटर्स एंड मेंटीज की जिसके अंदर वो अपने इश्यूज बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं किसी एक चीज पे मतलब अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन को क्यों उस तरह इम्प्रूव नहीं कर पा रहे या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो वो क्यों नहीं एजुकेशन के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को साथ लेकर चल रहे. इसके अंदर वो इस चीज़ को बावर करते हैं कि इन मसाइल से जो है वो निपटा जा सके.
3: जी तो सामईन अभी आपने सुना कि इस प्रोग्राम के मेंटोरशिप प्रोग्राम के एसओपीज़ क्या हैं. अब एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि हायरार्की अभी इन्होंने हमें बताई है उसका क्या स्ट्रक्चर है और किस तरीके से वो आपस में ये मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उस चीज़ को समझेंगे.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं यूसीपी की दुनिया FM 92.6। अभी आप सुन रहे थे मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में जो फैकल्टी ऑफ लॉ में शुरू किया गया और इसके SOPs के बारे में हमने समझा। अब आइए सुनते हैं कि ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है और इसकी जो तमाम मीटिंग्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। जी अब्दुलरहमान
2: जी शहूक, इसके अंदर जैसे मैंने पहले एक हायरार्की बताई है, अब उसको मैं बता देता हूँ कि उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या थी, उन हायरार्की को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है,
1: मीटिंग्स कैसे हो
2: और मीटिंग्स कैसे होती हैं। तो सबसे पहले जो मीटिंग मैं बताना चाहूँगा वो है मेंटीज की और मेंटोर्स की, कि मेंटीज और मेंटोर्स जो हैं वो वीकली मिलते हैं और जब उन्हें ज़रूरत पड़ जाए, अगर वो चाहते हैं कि हमारे इश्यूज़ को फौरन रिजोल्व किया जाए तो वो उस वक्त। और इसका मकसद यही होता है कि उस वीकली का अगर हम देखें तो जितनी भी वीक में क्लासेज होती हैं उसके अंदर अगर उन्हें कोई इशू आ रहा है तो वो उन्हें बताएंगे, अगर मेंटोर वो खुद रिजोल्व कर सकता है तो वो उनसे करेंगे, नहीं तो वो उनकी जो मीटिंग है मेंटोर की वो फैकल्टी मेंटोर और सुपरवाइजर से होती है, उसके अंदर वो इस चीज को रखते हैं कि
1: और ये मीटिंग कब होती है, इसका भी कोई फिक्स शेड्यूल होता है?
2: सो ये बेसिकली बाई वीकली होती है या मंथ में एक बार हो जाती है, जिसके अंदर सारे इशूज को एक जगह रखा जाता है और कोशिश की जाती है जो फैकल्टी सुपरवाइजर्स हैं वो अपने तौर पर इसको देखें, और जब ये अगर कोई ऐसा इशू है जो वो खुद नहीं देख पा रहे तो नेक्स्ट मीटिंग जो है वो सुपरवाइजर्स की डीन के साथ करवाई जाती है, और ये मीटिंग जो है वो मंथली या क्वार्टरली होती है, मतलब सेमेस्टर में दो बार हो जाएगी या मंथ में एक बार। तो उसके अंदर उसका पर्पज यही है कि जितने भी इश्यूज हैं जिनको वो खुद टैकल नहीं कर पा रहे वो कोशिश की जाती है डीन के सामने रखे जाएं कि डीन उन्हें अपने तौर पे सॉल्व कर ले, और फिर ये नहीं है कि ये इतना लंबा प्रोसेस फॉलो किया जाए जिसके बाद कोई इशू जो है वो रिजोल्व किया जाए। इसके अलावा जो है वो डीन मेंटोर्स से भी मीटिंग करता है कि मेंटोर्स अगर कोई बात फैकल्टी सुपरवाइजर्स को बताने में हिचकिचा रहे हैं वो डायरेक्टली डीन से को भी बता सकते हैं, और ये जो मीटिंग है वो क्वार्टरली और सेमी एनुअली होती है, जिसका पर्पज यही है कि मेंटोर्स से फीडबैक लिया जाए कि वो किस तरह चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। और इसके बाद जो है वो डीन की मेंटीज के साथ मीटिंग भी होती है जो एनुअली होती है, उसके अंदर इसका भी यही पर्पज़ है कि जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उनका इनिशिएटिव, जो डॉक्टर हादिया इवान का इनिशिएटिव है, उसको लेकर चला जाए, और ज़रूरी है कि मेंटीज से भी उनका प्रॉपरली फीडबैक लिया जाए मेंटोर्स किस तरह उनको टैकल कर रहे हैं।
1: जी, तो अभी आपने सुना कि इसका क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से ये काम कर रहा है मेंटोरशिप प्रोग्राम। अभी इस चीज़ को मैं इस बात को सुन के समझ सका हूँ कि मेंटोर जो एक नई लेयर ऐड की गई है इस प्रोग्राम के अंदर, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो गाइड करें, क्योंकि सुपरवाइजर्स, टीचर्स या डीन्स वगैरह तो पहले भी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग या एजुकेशन के ऊपर, अकेडमिक्स के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर काम करते रहे हैं। तो ये जो मेंटोर एक नया हमने एक लेयर है इसमें ऐड की गई है FOL के अंदर, इसका क्या रोल है, आइए इसके बारे में हुसैन से पूछते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि वो इस प्रोग्राम में कमेटी मेंबर भी रहे हैं और ख़ुद भी एज मेंटोर्स सर्व किया है। तो एज मेंटोर क्या रोल था इनका, वो प्लीज़ बताइए।
3: जी, जैसा कि आपने बोला कि मेंटोर का रोल क्या होता है, तो आई हैव सर्वड एज अ मेंटोर एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेंटोर का एक रोल है वो ये है कि एक गाइड बनना है आपने, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग द मेंटीज रिकॉर्ड्स, ठीक है, सारे के सारा आपने जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है या अटेंडेंस है, डिसिप्लिन और सारा कुछ जो आपका आपकी परफॉर्मेंस है यूनिवर्सिटी के अंदर एकेडमिकली एंड अदरवाइज, वो आपने ट्रैक करनी होती है एज ए मेंटोर। फिर उसके बाद उसके अंदर जो चीज़ उनको देखनी होती है कि वो ये है कि अगर कोई उनके मेंटी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आ रही है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि ऐसा एक्शन लिया जा सकता है जो कि उनके मेंटी के खिलाफ है, तो द मेंटोर विल बी रिस्पॉन्सिबल और उन्होंने देखना है कि उनका मेंटी जो है वो डिसिप्लिन में रहे। दूसरा, हम लोगों ने ये जो इसके अंदर मेंटोर के रोल्स में हमने एक चीज़ डाली हुई है वो ये कि ही और शी नीड्स टू स्केड्यूल फेस टू फेस मीटिंग्स रेगुलरली, ताकि वीकली हो सकती हैं, बाई वीकली हो सकती हैं, सो दैट हम उस चीज़ को एक रेगुलर चीज़ में लेके आ सकें और मेंटर जो है वो अपने मेंटीज को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सके, उनके इश्यूज को और उनको खुद। और जो एक जो मेंटर की क्वालिटीज़ हैं उसमें वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो खुद एम्पैथेटिक हो और उसके अंदर ह्यूमिलिटी हो, और उसकी जो वैल्यूज हैं वो कोशिश करे कि वो अपनी अच्छी वैल्यूज जो उसकी स्ट्रांग एथिकल वैल्यूज हैं वो अपने मेंटीज में इंस्टिल कर सके. लेकिन ये डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है कि वो अपने ओपिनियंस जो हैं वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, वो अदरवाइज भी हो सकते हैं, वो अपने ओपिनियंस इम्पोज ना करे बट रैदर इनक्रेज करे ताकि उसके मेंटीज जो हैं वो खुद अपने ओपिनियंस फॉर्म कर सकें.
1: जी बिल्कुल ठीक है. अब ये जो मेंटोर्स इतना जो रोल उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो इनकी अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है और क्या क्वालिफिकेशंस हैं जब एक मेंटोर को सिलेक्ट किया जाता है या अपॉइंट किया जा रहा है ग्रुप के लिए, तो अब्दुलरहमान इसके ऊपर ज़रूर हमें बताएं.
2: सो शहूक, इसके अंदर बेसिकली फोर फेजेस हैं अपॉइंटमेंट्स में. सबसे पहला जो फेज़ आता है वो अनाउंसमेंट्स का आता है और वो हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अनाउंस करते हैं ताकि हर इंडिविजुअल तक वो अनाउंसमेंट पहुंच सके. उसके अंदर सबसे पहले आता है कि सीआर कमेटी के थ्रू, सीआर शिप के थ्रू हम उसको अनाउंस कर रहे होते हैं. सेकेंडली आता है कि हम उन्हें ईमेल, नोटिस बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी पोर्टल के ज़रिए अनाउंस कर रहे होते हैं. और थर्डली हम उन्हें एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन स्टेप्स वो सारा कुछ उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं. जो सेकंड फेज़ है उसके अंदर हम एप्लीकेशन सबमिशंस रखते हैं जिसके अंदर फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर स्टूडेंट्स को हमने एलिजिबल किया होता है कि वो एज अ मेंटोर अप्लाई कर सकते हैं. उसके अंदर हम एक उनसे कवर लेटर और रिज्यूमे जो है वो डिमांड करते हैं. उसके अंदर फिर वो हमें डेडलाइन से पहले सबमिट करवा दी जाती है. जो थर्ड फेज़ है उसके अंदर इवेल्युएशन किया जाता है एप्लीकेशंस का, जिसके अंदर कमेटी बैठती है जिन्हें हेड कर रही होती हैं डॉक्टर हादिया ऐवान और दो मेंबर्स होते हैं उनके साथ अटैच जो इन सारी एप्लीकेशंस को रिव्यू करते हैं. और उसके अंदर फिर देखते हैं कि जो कैंडिडेट बेहतर है उसको एज अ मेंटोर अपॉइंट किया जाए. जो फिर फाइनल अप्रूवल है वो कमेटी से होते हुए उनका नोटिफिकेशन जो है वो कर दिया जाता है, जो नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है और फिर एक फाइनल कॉल जो है वो दे दी जाती है.
1: तो क्या ये जब मेंटोर्स अपने मेंटीज के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और एक प्रॉपर फॉर्मल सेटअप जो है वो ऑर्गेनाइज करके बैठे होते हैं, तो क्या इस सब चीज़ों को किसी तरीके से रिकॉर्ड भी किया जा रहा होता है? कोई मैकेनिज्म है, कोई टेम्पलेट्स हैं रिपोर्ट्स की सूरत में, किसी भी तरीके से आप उसका इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हो, या कोई लिमिटेशंस भी हैं इसकी, तो वो ज़रूर आप हुसैन इस पे में बताएं.
3: अच्छा, तो बेसिकली हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ प्रपोज टेम्पलेट्स बनाए हुए. ऑल्दो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए टेम्पलेट आप अपना खुद भी बना सकते हैं, जो मेंटोर्स हैं वो अपने लिए अपने हिसाब से टेलर भी कर सकते हैं. लेकिन जो हम लोगों ने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसके अंदर रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ये है कि वीकली जो अटेंडेंस आपकी होती है उसका रिकॉर्ड हो, कि उसमें जो आपके मेंटीज हैं उनके नाम और उनकी अटेंडेंस देखी जाए कि वो कितनी मीटिंग्स में कौन कौन प्रेजेंट था और कौन कौन नहीं था. एक ये है. फिर उसके बाद हम लोगों ने जो उनकी एकेडेमिक परफॉर्मेंस है उसके ऊपर एक टेम्पलेट है एक रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, जिसमें जो उनका CGPA है या उनका GPA है उस सब का मेंटेनेंस रखनी, उनके जो एग्ज़ाम्स में स्कोर्स आ रहे हैं वो सब, वो सारा कुछ जो है वो लिखा जाए. ठीक है. उसके अलावा जो इश्यूज हैं जो बच्चों को, जो बच्चे फेस कर रहे थे उनका एक रिकॉर्ड रखना चाहिए कि उस सारे के सारे नोट डाउन कर लिए जाएं कि कौन कौन से इश्यूज हो गए हैं, कौन कौन से इश्यूज अभी सॉल्व होने हैं. तो ये टेम्पलेट का एक वो है.
1: जी, तो सामाइन अभी आपने सुना कि मेंटोरशिप प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी अपॉइंटमेंट्स कैसी होती है मेंटोर्स के, और उनका क्या रोल है और किस तरीके से वो रिकॉर्ड मैनेज करते हैं. आइए एक ब्रेक के बाद हम सुनते हैं कि किस तरीके से मेंटीज ग्रुप्स असाइन होते हैं और किस तरह से जो एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसकी सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं.

0: fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP ki duniya.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, जहां पे आज फैकल्टी ऑफ लॉ के मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में हम समझ रहे हैं. आइए इसके नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं, जिसमें हम इनसे पूछते हैं कि ये जो मेंटोर्स हैं, ये किस तरीके से मेंटीज को साइन किए जाते हैं, क्या ये इंडिविजुअल होता है, ये ग्रुप्स में होता है, ये सेक्शन वाइज होता है, इसका क्या सिस्टम है, किस तरह से डिवीजन होती है रिक्वायर्ड मेंटोर्स के ऊपर. तो अब्दुलरहमान, इसमें आप जरूर हमें ये सारा प्रोसीजर बताएं कि किस तरीके से आप मेंटोर्स असाइन करते हैं, इसमें भी क्या कोई एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है या आप खुद जो है असाइन कर देते हैं मेंटिस को.
2: सो बेसिकली शहूक, इसके अंदर हम कैटेगराइज करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को. जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम, उनके लिए एप्लीकेशंस नहीं होती कि उन्होंने, उनके साथ एक मेंटोर अटैच किया ही जाएगा. लेकिन जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम एप्लीकेशंस ले लेते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं एज अ मेंटी दोबारा आने के लिए. तो
1: दोबारा आने के लिए इसका मतलब है कि अगर किसी ने पहले एक दो सेशंस मेंटोरशिप प्रोग्राम की अटेंड कर लिए हैं तो उनको आप ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम है तो उनको आप,
2: जी बिल्कुल,
1: उनके लिए कंपलसरी है ये.
2: जी, जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर हम इस तरह करते हैं कि हर सेक्शन से 10 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके, जो उनका ग्रुप होता है, जो क्लास एक्टिविटीज भी जिनके साथ वो कर रहे होते हैं, उनका 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है और जिन्हें फिर मेंटोर असाइन कर दिया जाता है. जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स देते हैं, ताकि जो फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जितनी भी उनकी लर्निंग है वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के सामने रख सकें और उन्हें एक दिखा सकें कि हम इतने फेज में हम कहाँ पे हैं और आप लोगों ने कहाँ पे पहुंचना है. जो सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको हम फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अलाइन करते हैं, ताकि जो मजीद लर्निंग है जो वो फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं मेंटोर्स के साथ, अब वो फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कर सके.
1: अब इसमें जितना अभी तक हमने मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में समझा है, तो इसको रन करने के लिए या जितने भी हमारे इसके अंदर लोग हैं, मेंटोर्स हैं या मेंटीज हैं, आपको क्या लगता है कि इस प्रोग्राम के क्या की इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका होना ज़रूरी है और फुलफिल होना भी ज़रूरी है इस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए?
2: सो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जो मेनली हैं वो है सबसे पहले ऑनेस्टी, कि जो मेंटीज और मेंटोर्स की ग्रुप की मीटिंग हो रही है उसके अंदर ज़रूरी है कि जो मेंटीज हैं वो मेंटोर से और जो मेंटोर है वो मेंटीज से ऑनेस्ट हो. सेकेंडली, जो भी बातें मीटिंग में हो रही हैं वो ओपन माइंडेड होनी चाहिए, ये नहीं कि किस जजमेंटल बिहेवियर नहीं उसके अंदर आना चाहिए. थर्डली, जो इंटरेस्ट है उनको देखना बहुत ज़रूरी है, कि जो मेंटोर है वो इस चीज़ को देखे कि उनके जो मेंटीज हैं वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उसके साथ उनको लेकर चले. फिर एक कम्युनिकेशन जो गैप है उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ मेंटोर्स और मेंटीज में बल्कि मेंटीज से डीन तक का जितना भी सफ़र है उसके अंदर सारा जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल बेहतर अंदाज में की जानी चाहिए. और जो हाई लेवल डिसिप्लिन है वो मेंटेन होना चाहिए, जिसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी भी आ जाता है.
1: तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब टीचर से हम अक्सर बात करते हैं तो एक झिझक रहती है और हम अपनी बात उस तरीके से नहीं कह पाते हैं, तो क्या मेंटोर्स के ऐड करने से आपको लगता है कि वो ओपनली हर बात, जो एक मेंटी है या स्टूडेंट है वो हर बात कम्युनिकेट कर देता है?
2: सो इसके अंदर ये होता है कि जो मेंटीज हैं चूंकि वो एक मुख्तलिफ सिस्टम से निकल के एक सेमेस्टर सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल होती है कि वो टीचर्स पे ट्रस्ट कर सकें जिन्होंने उन्हें मार्क्स देने हैं, उन्हें ग्रेड्स देने हैं. तो इसके अंदर ये है कि जो भी मसला आ रहा है मेंटीज को वो मेंटोर्स के जरिए टीचर्स को अप्रोच करें, और मेंटोर जो है वो फिर टीचर की, अगर कोई मेथोडोलॉजी की समझ नहीं आ रही या कोई भी इशू आ रहा है रिलेटेड टू टीचिंग स्टाइल और कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, तो वो मेंटोर जो है वो फिर टीचर से बात कर ले और वो टीचर जो है वो दोबारा उन्हें क्लास में एक्सप्लेन कर दे.
1: जी, इस प्रोग्राम के अंदर हुसैन, एज मेंटोर आपकी खुद की क्या लर्निंग रही है और आपको क्या लगता है कि एज मेंटोर आपने खुद इस प्रोग्राम के अंदर सर्व करते हुए क्या चीज़ें सीखी हैं?
3: जी बिल्कुल, एक मेंटोर जो है वो ना सिर्फ सिखा रहा है, वो खुद भी बहुत कुछ सीख रहा है. ही इज गेटिंग लीडरशिप स्किल्स, उसके पास जो है पढ़ाने की, सिखाने की और लीड करने की स्किल्स आ रही हैं. दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी जो अपनी ग्रोथ है वो एज अ पर्सन हो रही है, बिकॉज अगर आप किसी बंदे को जब आप गाइड करते हो, जब समझाते हो, सिखाते हो, ठीक है, एक बड़ा भाई बनते हो तो यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो बड़ा बहन भाई होता है दे हैव द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर यंगर सिबलिंग्स एट हार्ट. ना सिर्फ वो, तो उसमें आपकी भी ग्रोथ हो रही होती है, आपकी भी सबर को टेस्ट किया जा रहा होता है. बाज़ोकत आपके छोटे बहन भाई ऐसी बातें भी कर जाते हैं और डिसिप्लिन के खिलाफ बात भी कर जाते हैं, लेकिन उस वक्त आपका सबर है और आपने सिखाना है उनको कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत. तो इस तरह इससे इनकी भी ग्रोथ है. दूसरा ये है कि जो मेंटर्स को जो इस चीज

0: इसके ऊपर भी ग्रूम करते हैं, और आप लोग किस तरीके से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो खुद जो बेस्ट स्टूडेंट हैं तो वो खुद इन चीजों से बचे हुए हैं?
1: जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सो द होल पर्पस बिहाइंड दिस प्रोग्राम इज के जो मेंटीज हैं, जो स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनको एक गाइडिंग लाइट बन सकें, एक राह दिखा सकें। और जो सब्सटेंस अब्यूज का जो प्रॉब्लम है, सब्सटेंस अब्यूज का, वो काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है, और उसी चीज को कैटर करने के लिए और उस चीज को डील करने के लिए हम लोगों ने ये मेंटर जो है वो फिर अपने छोटे बहन भाइयों को बार बार इस चीज की तरफ हम लोग लेके जाते हैं कि छोटे बहन भाई हैं। तो जब छोटा बहन भाई आपका किसी सब्सटेंस अब्यूज में आ जाए तो आप उसको समझाते हो, आप उसको उस चीज से निकालते हो।
0: कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आया और वो एक ऐसे माहौल में यूनिवर्सिटी में आया जहाँ पे वो एक, मुझे लगता है शायद बहुत ज्यादा आजाद फील कर रहा है स्कूल और कॉलेज से निकलने के बाद, तो बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट हो सकते हैं इन चीजों पे। तो जो आ गया उसको वापस लेके जाने से ज्यादा बेहतर क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेके जाते हैं आप लोग, या कोई ऐसे SOPs भी हैं इससे रिगार्डिंग जो आपने ड्राफ्ट कर रखे हैं?
1: जी, सो बेसिकली जो सब्सटेंस अब्यूज का मसला है वो यही है कि जो मेंटर्स हैं वो गाइड करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि ये जो, बिकॉज डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से आए होते हैं, यूनिवर्सिटी में आके अक्सर बच्चों को ये लगता है कि अब उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं पेरेंट्स का, तो इसमें ये चेक एंड बैलेंस से ज्यादा एक गाइड के तौर पर, और जो आपके मेंटर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज में कोई फायदा नहीं है, इसमें आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, इनफैक्ट ये आपको सिर्फ डैमेज ही कर रहा है।
0: जी, तो सामाइन अभी आपने सुना कि मेंटोर्स को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, उनका क्या रोल है, और किस तरीके से जो है वो मेंटोर्स को मेंटीज के लिए असाइन किया जाता है, और एक क्या इंग्रेडिएंट्स है एक सक्सेसफुल मेंटोरशिप प्रोग्राम के, और एज मेंटोर क्या हमारी खुद की लर्निंग हो सकती है इस प्रोग्राम का पार्ट बन के। अब एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि एज मेंटी आपकी क्या मेजर लर्निंग्स हैं इस प्रोग्राम के अंडर, और वे फॉरवर्ड क्या है इस प्रोग्राम का, FOL इसको किस तरीके से मजीद आगे लेके चल रहा है, और इसका क्या फ्यूचर है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सुनते रहिए FM 92.6 UCP।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6 और आज के प्रोग्राम में डिस्कस हो रहा है फैकल्टी ऑफ लॉ का मेंटोरशिप प्रोग्राम। आइए देखते हैं कि मेंटोरशिप प्रोग्राम में एज मेंटी आपकी क्या लर्निंग है। अब्दुल रहमान, आपने एज मेंटी भी इस प्रोग्राम के अंडर जो है वो एक्सपीरियंस लिया है, बताएंगे कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपने स्पेसिफिकली एज मेंटोर के साथ सीखी हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही हैं आपकी ग्रोथ के अंदर।
2: सो बेसिकली शहूक इसके अंदर अगर हम देखते हैं, मेरे दो सेमेस्टर्स थे जो मैंने एज ए मेंटी रहा हूँ। उसके अंदर जो सबसे पहला था उसके अंदर हमने मूट ऑर्गेनाइज करवाया था हमारे मेंटोर ने।
1: और वो क्या होता है
2: मूट? इज़ बेसिकली जिसके अंदर आपको एक प्रोपोजिशन दे दी जाती है जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी होती है और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स डिवेलप करके आपने एक कोर्ट रूम के अंदर उनको प्रेजेंट करना होता है। तो इसके अंदर हमें हमारे मेंटोर ने एक और ग्रुप के साथ अलाइन किया जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन वर्सेज डिफेंडेंट हमें रख दिया गया और उसके बाद जो है वो एक मूट जो है वो हमें करवा दिया गया जिससे हमारी रिसर्च स्किल्स बेहतर हुई। जो सेकंड था मेरा सेमेस्टर जिसके अंदर हमें मॉक ट्रायल

0: एक्सपीरियंस दिया गया था उसके अंदर भी हमने इसी तरह किया था कि दो जो मेंटोर्स थे उन्होंने कोलैबोरेशन करके एक प्रोपोजिशन जो है वो अपने मेंटीज को दे दी और दोनों को एक साइड जो है एलोकेट कर दी गई जिसके अंदर उन्होंने उनको प्रेजेंट किया और एज अ मॉक ट्रायल का जो है एक्सपीरियंस लिया और यही वो स्टेज थी जहाँ से मेरा मूड कोर्ट एक्सपीरियंस भी स्टार्ट हुआ, इसके अंदर हमारी रिसर्च जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई।
1: जी तो सामीन आपने सुना कि मेंटीज की इसमें क्या लर्निंग है, आइए अब इसके प्रोग्राम के फ्यूचर के बारे में पूछते हैं कि इसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं और आप इसको मजीद क्या मैसेज है आपका यूसीपी के लिए और तमाम सुनने वालों के लिए कि इसको प्रोग्राम को किस तरीके से मजीद लोग इम्प्लीमेंट करें उसे।
2: जी बिल्कुल, सो इसका वे फॉरवर्ड यही हम लोग सोचते हैं कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर सब डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल किया जाए ये वाला प्रोग्राम, क्योंकि इससे सिर्फ फैकल्टी फ्लॉ वाले मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, सब हो सकते हैं। तो यही है कि हमारे डॉक्टर हादिया अवान जो हमारी डीन है उन्होंने भी यही चीज़ सोची हुई है कि ये बाकी डिपार्टमेंट्स में भी इम्प्लीमेंट हो और उसमें अगर कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो उसमें तो हम फैकल्टी ऑफ लॉ वाले प्रोवाइड करें।
1: जी थैंक यू सो मच सामईन, आज आपने सुना मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में और मुझे उम्मीद है कि हम सब के लिए मुस्तफ़ीद साबित हो। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त। आप सुन रहे हैं यूसीपी की दुनिया FM 92.6।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

उस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था, थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव ये वीरान तो न था।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतल्लिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहीं फिर के सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

इस सुर और ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: ट्वेंटी फोर सेवन ओनली ऑन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। इस प्रोग्राम के जरिए हम फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के असातिज़ा से एकेडेमिया, फैकल्टी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग स्किल, मीडिया ट्रेंड्स, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म, एड, PR, एंटरप्रेन्योरशिप और जैसे अहम मौजूदात पर गुफ्तगू करते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान खास मौजूद हैं, उनकी शख्सियत का तारुफ करवाते हुए मैं ज़रूर ये कहूँगी कि वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं है, बल्कि वो एक फिल्म मेकर हैं और बहुत ही काबिल फिल्म मेकर हैं, जो बहुत अवार्ड याफ्ता हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से हकीकत में कहानियों को किस तरह से नरेट किया जा सकता है, सोच से हकीकत तक का सफर बड़े अच्छे से कैमरे के थ्रू, कैमरे के लेंस के थ्रू अपने नाजरीन तक पहुंचाया। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
2: सर उमर सईद कुरैशी फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है, लेक्चरर हैं और साथ BS कोऑर्डिनेटर भी हैं। सर, आपका सफर एज अ फिल्म मेकर कहाँ से स्टार्ट हुआ? कहाँ से सोचा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कैमरा और लेंस और कैमरे की आंख क्या कहती है ये दिखाना है?
3: मेरे ख्याल से इट ऑल स्टार्टेड जब मैं छोटा था और मैंने एक दफ़ा जो एक ब्लरी मेमोरी मेरे माइंड में आती है कि मेरी वालदा हमारी पिक्चर्स लिया करती थी और उन्हें बड़ा शौक था। वो लाहौर से एक रील लाती थी और वो अपने कैमरे में डालती थी। उसके बाद जब वो पिक्चर लेती थी तो मुझे हमेशा से याद है, वो कहती थी कि आप दीवार से ज़रा दूर खड़े हों, पौधों से ज़रा दूर खड़े हों। शायद उन्हें एक्चुअल वर्ल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड का तो नहीं पता था, बट उन्हें कॉन्सेप्ट का अंदाज़ा लाजमी था कि जब वो हमें खड़ा करती थी दीवार से दूर तो जो भी सनफ्लावर्स थे या दीवार थी वो हमेशा ब्लर सी आती थी। तो मुझे वो मेमोरी तब भी याद है कि बचपन में कैसे हमारी पिक्चर्स ले रही होती थी। और मुझे लगता है वही रीज़न था कि जब मैं बड़ा हुआ पहली दफ़ा FSC में गया, मुझे स्कॉलरशिप मिली, मुझे थोड़े पैसे मिले, तो जो मैंने पहली चीज़ ली वो मैंने अपना कैमरा लिया। और उससे पहले भी जो मेरे पास सेल फोन्स होते थे, मैं हमेशा वो सेल फोन लेता था जिसका कैमरा हमेशा अच्छा होता था, और वो कैमरे से पिक्चर्स ली, अपने Pentium 1 में डाली और उसे एडिट किया। एक सॉफ्टवेयर होता था उस ज़माने में, डेट वॉज फोटोस्केप। तो मुझे लगता है हमेशा से मुझे शौक था नेचर कैप्चर करने का, लोगों को कैप्चर करने का, रियलिटी कैप्चर करने का।
2: तो जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे फिल्म मेकिंग में जाना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, जैसे आप बता रहे थे कि आपने FSC किया है, तो घर वालों ने सपोर्ट किया? उन्होंने कहा नहीं कि ये क्या करने वाले हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा करके क्या कर लोगे, इसमें क्या कमा लोगे?
3: बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो KPK के लोग हैं पंजाब में, तो शायद ये बड़ा कॉमन था, मैस मीडिया, फिल्म, फोटोग्राफी, हमारे वहाँ पे दो ही शोबे समझे जाते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। तीसरा फाइन आर्ट्स वाले बच्चों को समझा जाता था कि शायद बड़ा कमज़ोर कुन जैन बच्चा है, ये ज़्यादा पढ़ नहीं सकता। तो जब मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने वालिद को बताया, तो फर्स्ट तो वो थे कि नहीं, किसी अच्छी फील्ड में चले जाओ, बिजनेस में चले जाओ, कुछ और कर लो एंड ऑल दैट। लेकिन लकीली मेरे कुछ कज़न थे लाहौर में, कुछ दोस्त थे जो NC में पढ़ रहे थे, और जब बात की उनसे, उनने वालिद साहब को मनाया। बट नो डाउट पीयर प्रेशर, वालदैन का प्रेशर था कि कोई अच्छी फील्ड चूज़ करो, ये नई फील्ड है, इसमें पैसे नहीं है, कैरियर नहीं है, लोग इसे अच्छा देखते नहीं है, समझते नहीं है, तो वो प्रेशर तो हमेशा से था। बट मुझे लगता है मैं भी काफ़ी ज़िद्दी था और मैंने मना लिया किसी ना किसी तरह।
2: और वो यही होता है ना कि टाइम के साथ आपके पेरेंट्स समझ भी जाते हैं कि इसकी क्या कैपेसिटीज़ हैं और ये कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो जब आपने फिल्म मेकिंग का स्टार्ट किया तो क्या ऐसी चीज़ थी, क्या ऐसे पर्सन, कौन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया टू बी अ फिल्म मेकर?
3: मुझे लगता है सबसे पहले तो जो हॉलीवुड और बॉलीवुड सिनेमा था उस ज़माने में, कुछ चैनल्स आते थे और मैं हमेशा, एक फिल्म थी मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज, उनकी एक मूवी थी मकबूल, और वो केबल पे एक दिन चली और हम बैठ के देखते थे, छुप के घर से देखते थे क्योंकि मूवीज़ भी नहीं देखने देते थे घर वाले। तो मकबूल मैंने पहली दफ़ा देखी और मकबूल देख के मेरे माइंड में आया कि ये लिखता कौन है, बनाता कौन है, कैसे बनती हैं। और एक NCA के मेरे दोस्त थे, वो जब लाहौर से एबटाबाद आए तो मैंने उनसे पूछा कि ये फिल्म बनती कैसे है। ये लिखता कोई और बंदा है, शूट कोई और करता है, इसका साउंड कोई और करता है, एडिट कोई और करता है। तो मैंने कहा ये सारा कैसे सीखूंगा मैं। तो उनने फिर मुझे बताया कि देयर इज अ डिपार्टमेंट NCA में, BNU सक न्यू ओपन हुई थी, तो उनने मुझे कहा वहां पे आप जाएंगे आपको सब चीजें थोड़ी थोड़ी सिखा दी जाएंगी और इन सबको कंबाइन करके फिल्म बनती है। तो मैं स्टार्ट में तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा क्योंकि मैं तो एक लाइन भी नहीं लिख सकता था। तो लेकिन कुछ फिल्म्स और कुछ डायरेक्टर्स ने मुझे इंस्पायर किया, जिसमें पहला नाम मैंने विशाल भद्वाज लिया, दूसरा दिल से एक मूवी आई थी मनी रत्नम की। तो मनी रत्नम की मूवी मैंने देखी, उस वक्त उसका एक गाना था सतरंगी, तो वो क्योंकि पहाड़ों में शूट हुआ है, मैं खुद पहाड़ों से था एंड ऑल डैट, तो मैं हमेशा पहाड़ों को देखता था। मैं कहता था यार ये गाना मैं भी कभी शूट ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा फैक्टर्स थे उस वक्त जो मैं चीजें देखता था, उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि यार करनी चाहिए फिल्म मेकिंग।
2: इसमें आपको ये नहीं लगता कि आपका जो रहन सहन होता है, जो आपका कल्चर होता है, जो आपकी, जैसे आप कह रहे थे पहाड़ों से है, वो आपकी इमेजिनेशन को बड़ा बूस्टअप करता है?
3: बिल्कुल बूस्टअप करता है, और यही रीजंस हैं कि अभी भी जो मूवीज मैं देखता हूँ जो कि मोस्टली पहाड़ों में बनी हुई हैं, वो मुझे इंस्पायर ज्यादा करती हैं एज कम्पेयर टू अदर मूवीज, क्योंकि वो बचपन जिया आपने, वो रियलिटी देखी है, ऑब्जर्व किया। जिस तरह रिसेंट एक फिल्म थी लैला मजनू, वो लैला मजनू शायद इतनी अच्छी फिल्म नहीं होगी, बट मुझे इसलिए अच्छी लगी पहाड़ों में शूट हुई। देयर इज अनदर फिल्म हैदर विशाल भरद्वाज की, वो उससे ज्यादा कनेक्ट मैं इसलिए कर सकता हूँ कि शायद वो पहाड़ों में शूट हुई। तो मुझे लगता है इन्फ्लुएंस तो होता ही होता है जिस कल्चर में आप पले बढ़े, और उस कल्चर में हमें एक और चीज बड़ी मिलती थी, वो था सुकून और टाइम। अफरा तफरी नहीं थी जैसे कि बाकी शहरों में होती है। तो हमारा एक ही काम होता था, या तो नेचर ऑब्जर्व करना या तो लोगों को ऑब्जर्व करना। और मेरे ख्याल से फिल्म मेकिंग में ये दोनों बेसिस हैं कि आपने अपना स्टोरी वर्ल्ड कैसे बनाना है और उसमें जो अपने कैरेक्टर्स डालने हैं वो कैसे डालने हैं। तो वो मेरे ख्याल से उसी इंसान के लिए पॉसिबल है जिसने ऑब्जर्व की होंगी ये दोनों चीजें।
2: और एज अ फिल्म मेकर, जब आपके स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं और वो आपको अपने आइडियाज का बताते हैं और वो कहते हैं कि हम इस तरह का कुछ करना चाह रहे हैं, तो एज टीचर और एज अ फिल्म मेकर कितना चैलेंजिंग होता है उनको बताना कि बेटा आप राइट डायरेक्शन में हो, या किस तरह से इसको आप ओवरऑल अपनी इमेजिनेशन को पोर्ट्रे कर सकते हो?
3: मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल चीज होती है वो होती है रियलिटी, एक तो होती है लिव्ड रियलिटी और एक होती है इमेजिनेटिव रियलिटी जो आपने किसी मूवी में देख ली। फॉर एग्जांपल, मैंने कभी सरसों के खेत अगर रियलिटी में नहीं देखे, मैंने खाली उन्हें करण जौहर की फिल्म्स में देखा, तो वो रियलिटी सेकंड हैंड रियलिटी है मेरे पास और वो खाली इमेजिनेटिव चीज है। मैंने रियलिटी में देखी नहीं कि सरसों के खेत लगते कैसे हैं। तो बच्चों का मसला ये है कि वो जो उनने रियलिटी लिव की है, जो एक्सपीरियंसेस लिव किए हैं, वो उसे कभी भी स्क्रिप्ट में नहीं लाते। वो जो सेकेंडरी रियलिटी गैंग्स ऑफ वसीपुर देख लिया, मिर्जापुर देख लिया, वो चाहते हैं कि वो वाली रियलिटी लिख के लाएं जो कि बिलीवेबल नहीं बन रही होती है टाइम्स। तो मैं उन्हें पहला जो असाइनमेंट है वो वही देता हूं कि जो चीज आप डेली ऑब्जर्व कर रहे हो उसे लिखो। वो किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी जगह पे चोरी हो सकती है, किसी जगह पे लड़ाई हो सकती है। तो मुझे लगता है जो लिव रियलिटी है वो लिख अच्छे तरह से सकते हो और आप वो शूट अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपने वो ऑब्जर्व किया होता है, पल जिया होता है।
2: इसी के साथ लिसनर्स, हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर्ट्स।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूए गुफ्तगु हैं वो हैं सर उमर सईद कुरैशी, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। अभी ब्रेक में जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स के लिए कितना चैलेंजिंग है और एज अ फिल्म मेकर आपके लिए कितना चैलेंजिंग है उन्हें समझाना, तो सर कोई ऐसी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो आपके करियर में आपको जिसने टफ टाइम दिया हो या जिसके बाद आपका सोच या आपके काम करने का जाविया बड़ा बदल गया?
2: मेरे ख्याल से एक फिल्म थी जो हमने की फसी बारी खान के साथ, जिनका एक बड़ा फेमस प्रोग्राम चलता है कदूसी साहब की बेवा। तो फसी भाई की स्क्रिप्ट जब पहली दफ़ा आई वो इतनी अच्छी सादा सलीस उर्दू थी कि वो समझते हुए हमें टाइम लगा। और मैं इससे पहले डेफिनेटली FSC तक उर्दू तो पढ़ता रहा, लेकिन काफ़ी गैप के बाद इतना अच्छा जब कोई प्रोजेक्ट आया वो मैंने पढ़ा। और वो जब पढ़ा मैंने, क्योंकि जो एक अच्छा राइटर होता है उसकी निशानी यही होती है कि जब आप उसकी स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आप इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हो चीज़ों को। तो जो फसी भाई की स्क्रिप्ट थी वो चैलेंजिंग इसलिए थी कि पहली दफ़ा इतने बड़े राइटर के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल काम किया, दूसरा फसी भाई डायरेक्ट भी कर रहे थे, सेट पर भी थे। मुझे लगता है वो एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जब हमने किया क्योंकि वो अंदरून लाहौर में करना था, और अंदरून लाहौर की छोटी गलियों में लोग ना जमा हो जाएं, फिर जब आप कमरे में शूट कर रहे हो तो बाहर से रेडी वाले की आवाज आ रही है, कभी किस बच्चे की आवाज आ रही है, ऑल दैट। तो वो इतनी बड़ी प्रोडक्शन में जब मैंने पहली दफा शूट किया और शूट के बाद जब वो एडिट होकर सामने आया, तो एक तो आपको अपने पोटेंशियल पे भी यकीन होने लगता है, आप कहते हो यार ये तो मैं कर सकता था, और फिर आप कहते हो मैं कर क्यों नहीं रहा था। तो वो प्रोजेक्ट ने मुझे लगता है हमें बड़ा कॉन्फिडेंस दिया फॉर अ रीजन के वो उसके बाद साइप्रस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक गया, वहां पे स्क्रीन हुआ, उसके बाद वो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुआ। जब यहाँ दो जगह स्क्रीन हुआ तो मुझे लगा कि यार इतनी मेहनत करके हम कोई और प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और वो डेफिनेटली इससे आगे भी जा सकता।
1: अच्छा, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप एक वर्ड बार बार बात कर रहे हैं एडिटिंग का, यानी एडिटर और एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्टर, इसमें डिफरेंस क्या होता है?
2: देखिए, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं एडिटर, जो कि एंड रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस पूरी फिल्म का करता है। हमें पहली क्लास में फिल्म मेकिंग की पढ़ाया जाता था कि जो एडिटर होता है वो फिल्म का खुदा होता है। वो एक अच्छी शूट की हुई चीज़ को बुरा भी बना सकता है और बुरी शूट की हुई चीज़ को कमाल भी बना सकता है। तो एडिटर तो बाद में आते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सिनेमाटोग्राफी है। जो एक सिनेमाटोग्राफर होता है उसका काम अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाया जाए तो इट्स लुक एंड फील। आपको फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे भी कहूँ, आप एक क्लिप चल रहा है इंटरनेट पे, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये जब भी मेट का है, तो आप विद इन सेकेंड्स कहेंगी हाँ। मैं आपसे पूछूं क्यों, आप कहेंगी पूरी फिल्म में जो लुक एंड फील है वो सेम ही है, और मैं जहां पे इसका क्लिप देखूंगी मुझे पता लग जाएगा। ये निशानी है एक अच्छे सिनेमाटोग्राफर की कि उसने अपना एक स्टोरी वर्ल्ड बनाया और वो स्टोरी वर्ल्ड लोगों को याद करवा दिया खाली अपनी लुक एंड फील के थ्रू। अब सिनेमाटोग्राफर का काम हमारे पाकिस्तान में समझा जाता है कि खाली कैमरा हैंडल करना, हालांकि सिनेमाटोग्राफर का काम यूजली कैमरा हैंडल करना नहीं होता। वो कॉम्प्लेक्स शॉट्स में तो कैमरा खुद हैंडल कर सकता है, लेकिन वो यूजली कैमरा ऑपरेटर से जो लुक एंड फील होती है डिजायर्ड किसी सीन की, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक सुबह है जहाँ पे दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से काम कर रहे हैं और दोनों खफा एक दूसरे से, यानी उदासी है कमरे में। अब राइटर ने तो लिख दिया, डायरेक्टर ने कहा मुझे उदासी भी चाहिए, एवरीथिंग। अब ये आप कैसे दिखाओगे थ्रू कलर्स, थ्रू फ्रेमिंग, थ्रू लेंस, कि कितना गैप है दोनों में, बीच में क्या चीजें हैं, क्या वो किसी बीच पे खड़े हैं, नेगेटिव स्पेस कितना है, पॉजिटिव स्पेस कितना है, कॉम्पोजिशन कैसी है। तो सिनेमाटोग्राफर राइटर की चीजों को स्क्रीन पे लेके आता है थ्रू लुक एंड फील। सिनेमाटोग्राफर के बाद फिर एडिटर के पास जाती है चीज, और एडिटर जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई होती हैं, कुताइयां रह गई होती हैं सिनेमाटोग्राफर से, उसे समझाता है कि यहाँ पे मैं ये चाहता था 19-20 हो गया, अब आप इसे ठीक कर दें थ्रू कलर टोनिंग या थ्रू कलर ग्रेडिंग। और इसका भी डिफरेंस अक्सर स्टूडेंट पहली क्लास में पूछते हैं कि कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग का क्या डिफरेंस होता है, तो वो हमेशा जो हमें सुन भी रहे हैं उनके लिए भी यही है कि कलर करेक्शन आपकी सिंपली ओवरऑल आपकी मूवी क्या तो कूल टोन की तरफ है या तो वार्म टोन की तरफ है। बट कलर ग्रेडिंग में जब हम आते हैं, हम कहते हैं जी अगर कोई बंदा बैठा हुआ है हमारे सामने वाइट के आगे वाइट शर्ट पहन के, तो वाइट के आगे वाइट शर्ट कभी भी ठीक नहीं लगेगी, बंदा प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो कलर ग्रेडिंग में हम उस वाइट शर्ट का कलर चेंज करके ब्लू कर देते हैं। अगर किसी बंदे ने रेड लिपस्टिक या किसी खातून ने लगाई हुई है और हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा लग रही है, तो हम कलर ग्रेडिंग में जाके उस लिपस्टिक को टोन डाउन कर देते
1: और वो हो जाता है इजीली
2: हो जाता है, और हमने बहुत बड़े बड़े शूट्स में किया।
1: ठीक है, और इसी तरह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में क्या डिफरेंस होगा?
2: प्रोड्यूसर यूजली इन फिल्म प्रोड्यूसर यूजली करता है इस तरह की, एक तो बजट वो जहां से भी लाए, चाहे वो स्पॉन्सर्स के थ्रू लाए, किसी चीज के थ्रू लाए, उसके बाद फिल्म की मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। डायरेक्टर खाली कर ये रहा होता है कि आपके राइटर के विजन को स्क्रीन पे लाने वाला प्रोसेस सारे डायरेक्टर के पास होता है, और जो प्रोड्यूसर है वो आपका बजट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल कर रहा होता है सारी।
1: और सर अगर बात करें हम फिल्म मेकिंग की और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की, तो किसकी डायरेक्शन प्रोडक्शन बहुत चैलेंजिंग होती है और किस में बहुत ज्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किसको रियल कैमरा और वो जो रियल और रील का डिफरेंस है उसमें खत्म करना जो है वो बहुत चैलेंजिंग लगता है?
2: मुझे लगता है कि अगर मैं क्योंकि मैं खुद फिल्म ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो आप किसी डॉक्यूमेंट्री वाले से पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट्री को ही कहेगा। मुझे लगता है कि एक स्टोरी वर्ल्ड बनाना इज़ ज़्यादा डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू एक स्टोरी वर्ल्ड बना हुआ और उसमें जाके शूट करना, बट दोनों की डिफ़िकल्टीज़ अपनी अपनी है। अगर आप मुझसे पूछेंगी कि एक स्टोरी वर्ल्ड बिल्ड करना बाय फिल्म की, हम सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। जो डेफिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा सूट करती है, मुझे लगता है इट्स एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी। रियलिटी का आपने एक बबल क्रिएट करना है, और जो सिनेमा में बैठा हुआ है उसे पता है कि वो एक इल्यूजन देख रहा है, बट वो स्टिक हो गया उसके साथ क्योंकि उसे वो रियलिटी लग रही है। अब वो रियलिटी क्रिएट करना मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है एज कंपेयर टू डॉक्यूमेंट्री। आप रियलिटी में जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं और उसे फिर क्रिएटिवली ट्रीट कर रहे हैं। रियलिटी तो आपके पास बनी पड़ी है, फिल्म में तो आपने एक रियलिटी बनानी है और यकीन दिलवाना है कि ये रियलिटी है, इल्यूजन एक क्रिएट करनी है। तो मुझे लगता है कि वो इल्यूजन ऑफ रियलिटी बनाना ज्यादा मुश्किल है
1: एज कम्पेयर
2: टू डॉक्यूमेंट्री, लेकिन आप ये डॉक्यूमेंट्री वाले से पूछेंगे तो शायद उल्टा जवाब आएगा।
1: ऐसे ही है। और सर जब स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, आपके पास भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें अक्सर डिमांड में आप ही मिल रहे होते हैं फिल्म मेकिंग में, बच्चे चाह रहे होते हैं कि वो आपके साथ प्रोजेक्ट्स करें, तो आप ज्यादा फिल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट्स करवा रहे होते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज के भी करवा रहे
2: हैं? मैं एक आधा डॉक्यूमेंट्री का लाजमी पकड़ता हूँ, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उनको करवाते करवाते मेरी प्रैक्टिस भी हो रही होती है, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मैंने की भी हैं, 3 से 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा पसंद मुझे फिल्म ही है, बट डॉक्यूमेंट्री के प्रोजेक्ट्स मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए भी करवा रहा होता हूँ।
1: और फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्री में कितना चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट?
2: मेरे ख्याल से चैलेंजिंग इसलिए होता है कि आप बच्चों को जितना मर्जी अच्छा समझा दो, एंड रिजल्ट जब वो लेके आते हैं वो अपनी समझ के मुताबिक लेके आ रहे होते हैं, और फिर उसे ही निखारना होता है आपने, और एंड पे सम हाउ पूछा यही जाता है कि कौन था सुपरवाइजर, चाहे वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो तब भी सुपरवाइजर, बहुत बुरा हो तो तब भी सुपरवाइजर। तो मुझे लगता है वो फिर आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ती है क्योंकि आपका नाम साथ जा रहा होता है।
1: ऐसे ही है, और इसी के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन अब एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज हमारे साथ सर उमर सईद कुरैशी हैं और हम बड़ी मजे की गुफ्तगू कर रहे थे अभी स्टूडेंट्स और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सर मुझे ये बताएं, हम एज इन प्रोग्राम जो हमारा है फिल्म मेकिंग का, उसमें स्टूडेंट्स ऑफ फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या उनके लिए हम सपोर्ट फैक्टर्स और क्या उनको किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं?
2: मेरे ख्याल से देखा जाए तो रिसेंटली अभी एक हफ्ता पहले हमने चार सेमिनार करवाए और उन चारों सेमिनार में जो लोग आए वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स थे और जिनने टॉप के कमर्शियल्स और फिल्म्स प्रोड्यूस की हुई थी मार्केट में। उनके साथ उनके सेशंस थे डेढ़ डेढ़ घंटे के, जो कि दो दिन चार सेशंस चलते रहे। उसके बाद मुझे लगता है ये जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो फिल्म मेकिंग में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। ये ना तो आपको सिखाता है, एट द सेम टाइम ये आपको मोटिवेट भी करता है। इन सेमिनार्स के अलावा जो हमारे पास स्टूडियो अवेलेबल है, मुझे लगता है स्टूडियो के अलावा भी रिसेंटली हमारे पास जो कैमराज आए हैं, जो बिगिनर लेवल फिल्म मेकिंग कैमराज हैं, A7 III और बाकी कैमराज इक्विपमेंट हमारे पास, साउंड का इक्विपमेंट आया है। मुझे लगता है बिगिनर लेवल फिल्म मेकर के लिए ये लैब इक्विपमेंट सफिशेंट है फिल्म में एंट्री लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली आपको बड़ा इक्विपमेंट, बड़ी लाइटें चाहिए, बट मुझे लगता है इनसे इस हद तक आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप इंडस्ट्री लैंड इजीली कर सकते हैं।
1: सर जैसे अभी आपने कमर्शियल्स की बात की तो मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी, उसमें मेंशन था कि आपने टेक्नो, रियलमी और इन्फिनिक्स के टीवी कमर्शियल्स को प्रोड्यूस भी किया हुआ है। वो एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंट था फ्रॉम योर फिल्म मेकिंग, और वो जर्नी और ये जर्नी कैसा रहा है पूरा सफर?
2: मुझे लगता है कि जो कमर्शियल कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके हाथ पैर तो बांध देते हैं बट आपको फाइनेंशियली बड़ा सपोर्ट करते हैं। बट जहां आप फिल्म मेकिंग में आते हैं वहां आपको मसला ये होता है, मसला तो नहीं मैं कहूंगा, क्रिएटिव फ्रीडम लाजमी होती है, बट मुझे लगता है अभी तक पाकिस्तान में वहां थोड़ा पैसा कम है। तो दोनों के मेरे ख्याल से अपने कॉन्स और बेनिफिट्स हैं, और अगर देखा जाए तो कमाना ज्यादा पाकिस्तान में कॉर्पोरेट और कमर्शियल काम से ही है, और अपनी क्रिएटिव फ्रीडम के लिए लोग यूजली फिल्म मेकिंग और बाकी चीजें करते रहते हैं।
1: और सर जो आपको सुन रहे हैं उन स्टूडेंट्स को आप क्या फिल्म मेकिंग से रिलेवेंट, क्या ऐसी एडवाइस और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बताना चाहेंगे कि जब वो अपने करियर का आगाज करें तो इन टिप्स और ट्रिक्स को लाजमी फॉलो करें?
2: मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज तो ये है कि फिल्म देखें ऑब्जर्वेशन से। आपको अगर आप नहीं जाके बाहर ऑब्जर्व कर सकते, चीजें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं ले रहे, ट्रेवल नहीं कर रहे, लोगों से नहीं मिल रहे, तो जो सबसे पहली चीज़ है फिल्म्स देखें और डिफरेंट जॉनर्स और डिफरेंट कंट्रीज की फिल्म देखें। मसला यह है कि यहाँ पे सारा कमर्शियल काम देखा जाता है, हालांकि ये खाली कमर्शियल सिनेमा है, और कमर्शियल सिनेमा को अगर मैं सम अप करूँ तो इट्स लाइक अ मिक्स अचार जिसमें सब के लिए सब कुछ है। लेकिन जब आप आर्ट सिनेमा की तरफ जाते हैं जो कि स्पेसिफिकली प्योर ऑब्जर्वेशन है, सोसाइटी के मसले हैं, कल्चर के मसले हैं, वो सिनेमा देखने से आप कुछ ना कुछ लाजमी सीख रहे होते हैं। और अगर तो आप रियल लाइफ में ऑब्जर्वेशन आपकी वीक है, आप ट्रैवल नहीं करते, तो मुझे लगता है आप आर्ट सिनेमा देखें, क्योंकि मुझे लगता है देखने से जितना आप सीखते हैं, क्योंकि मैंने जब जाता हूँ शूट करने कोई भी चीज़ तो कहीं ना कहीं से मेरे माइंड में इंस्पिरेशन होती है कि मैंने फलां फिल्म देखी थी, वहाँ पे ये कॉम्पोजिशन थी, वहाँ पे शॉट इस तरह लिया हुआ था। तो आपकी विजुअल वोकैबुलरी बढ़ती जाती है जब आप अच्छी फिल्म्स देखते हैं। तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स को मशवरा है कि डेली की एक फिल्म देख के सोएं।
1: और सर जब स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट करना होता है तो उनकी डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एज अ DOP वो सब चीज़ें खुद कर रहे होते हैं?
2: नहीं, मोस्टली वो हेल्प ले रहे होते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग में आपकी प्रोडक्शन के लिए आपको वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए होती है। तो जो हम एम्फसाइज करते हैं कि एटलीस्ट एडिटिंग और डायरेक्शन आप खुद करें, DOP, लाइट, गैफर ये आप बाहर से लोग हायर कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग में इन द एंड काम डायरेक्टर ने ही करवाना है। गैफर को तो आप कहेंगे इस प्लेस पे लाइट रखे, इस डायरेक्शन में लाइट रखे, वो रख देगा। कहाँ से कट करनी है, कितनी कट करनी है, कितनी डिफ्यूज करनी है, वो डायरेक्टर का ही काम है, तो वो काम करवाता है यूजली।
1: ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल अभी का टाइम की बात की जाए तो AI ने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है, तो क्या स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोजेक्ट को इस तरह से मैनेज करना, प्रोजेक्ट को लेके चलना उतना ही आसान है, या स्टूडेंट्स जो है उसकी वजह से चीज़ों का फायदा उठाते हुए कुछ चीज़ों को कर भी रहे हैं, कुछ चैलेंजिंग भी है?
2: देखिए, अगेन AI इज अ गुड थिंग और होनी भी चाहिए स्टोरी बोर्ड तक और बाकी चीजें आपकी हेल्प लाजमी असिस्ट लाजमी करती है, बट एआई ने वो दुनिया नहीं देखी, वो एक्सपीरियंसेस नहीं देखे, ना वो फील किए हैं जो कि एक नॉर्मल बंदा रियल लाइफ में कर सकता है। जैसा कि सिंपल एग्जांपल दूंगा, इम्तियाज अली की जितनी फिल्म्स होती हैं उसमें आप देखेंगी कि जब भी करेक्टर को हर्ट होता है लव लाइफ में या कुछ उसको धचका लगता है जिंदगी में, तो वो अकेला बैठ के खाना खा रहा होता है। अब ये चीज आपको एआई नहीं बता सकता, ये आपकी प्योर ऑब्जर्वेशन है कि जब बंदे का दिल दुखी होता है तो क्या क्या क्या क्या पॉसिबिलिटीज में कर सकता है। इम्तियाज अली की फिल्म में आपको मिलेगा कि वो अकेला बैठ के किसी फूड पॉइंट पे खाना खा रहा है। अब एआई आपको नहीं बता सकता, वो बताएगा शायद अमेरिका के कल्चर के हिसाब से कि हाँ जब कोई बंदा सैड होता है तो वो जाके समंदर के किनारे बैठता है, तो लाहौर में तो आपको समंदर नहीं मिलेगा, यू हैव टू फाइंड समथिंग एल्स। तो मुझे लगता है कि असिस्ट लाजमी कर सकता है, आप उसे बता सकते हो जी रावी किनारे बैठा हुआ है मेरा बंदा एंड ऑल दैट, अब मुझे बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके एक्शन की, तो वो लाजमी कर सकता है, असिस्ट लाजमी कर सकता है, बट जो विजन है प्योरली वो आपका ही है।
1: और क्या स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प करता है स्टूडेंट्स को एआई?
2: मेरे ख्याल से करता है, असिस्ट करता है, मैं अभी हेल्प इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने खुद बड़ी स्क्रिप्ट जनरेट करवाने की कोशिश की है। हेल्प तब करता है जब आप क्लियर हो कि आपने क्या करना है, मैंने एक सीन दिखाना है तो मैं उसे बताऊंगा सीन में ये चीज चाहिए, ये मेन पॉइंट्स है, हाँ वो तब लिख देगा। अगर मैं उसे कहूंगा सीन लिख दे पूरा, तो वो आधी उसने कोई चीजें अमेरिका की देखी होंगी, आधी साउथ अफ्रीका की कहीं कहां की, तो मिक्स करके कुछ चीज तो लिख देगा नो डाउट, बट उसमें प्योरिटी और क्लैरिटी मुझे अभी तक नहीं मिली।
1: और एज अ फिल्म मेकर एंड अ टीचर कितना चैलेंजिंग है उस काम को जज करना जो शायद स्टूडेंट्स ने असिस्ट करवाया हुआ है एआई से।
2: मैं कल से असिस्ट करवाना मुझे बहुत बेहतर लगता है, बट मैं उससे पहले उनका विजन लाजमी पूछता हूँ। मैं कहता हूँ अपने विजन, अपने शॉट्स, अपनी चीजों में क्लियर हो जाओ, उसके बाद एआई से हेल्प ले लो। फॉर एग्जांपल रीसेंट एक शॉट था और एक बच्चा वाज वेरी क्लियर कि मैंने क्या करना है, बट उसने अपने डीओपी को समझाना था, तो मैंने कहा यही चीज आप लिखो एआई में और एक इमेज जनरेट करवाओ और यही अपने डीओपी को दिखा दो कि मुझे एग्जैक्टली ये चीज चाहिए। तो यहां तक मामला मुझे क्लियर लगता है कि जब आप क्लियर हो और आपने काम करवाना है तो आप असिस्टेंस लाजमी लो, बट प्योरली जब आप एआई के ऊपर चले जाओगे तो मेरे ख्याल से विजन आपका नहीं रहेगा।
1: और लास्ट में जो आप एडवाइस देना चाहें फिल्म मेकिंग में स्टूडेंट्स को, जो स्पेसिफिकली इसको एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है?
2: मेरे ख्याल से सबसे पहले तो फिल्म्स देखें, दूसरी चीज डेली अगर आप इतने पैशनेट हैं जाएं पिक्चर्स लें, फ्रेमिंग बेटर करें, क्लिप शूट करें, बैठ के एडिट करें। अगर ये पैशन नहीं है और आपको ये सर दर्द लग रहा है तो मुझे लगता है फिर शायद आपको और फील्ड चूज कर लेनी चाहिए।
1: इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। बहुत शुक्रिया सर उमर सईद कुरैशी, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में आके हमें इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई फिल्म मेकिंग से रिलेवेंट, और सीखने को इतना कुछ मिला। मुझे यकीन है कि हमारे सामईन ने भी बहुत कुछ सुना होगा। नेक्स्ट वीक इसी तरह से मेरा और आपका सिलसिला जुड़ा रहेगा और मिलेंगे फकेलिटी आर्ट के साथ।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुतालिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। PTA
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: यही है मेरी पहली आशिकी।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

जंग सणु चुप चुपीता वेख के पई आखण लोग मलंग असा खुबे गम दे खोबड़े साडे लंबे हो गए केस पाता ने बाने सोच दे असा बुंदे रहंदे खेस साडे सर ते सूरज हाड़दा साडे अंदर सीत सया बिन छा हुण चीतर रुख दी साडे अंदर बांबड़ बार असा मच मचाया इश्क दा साडे लूसे आ इक इकलू असा खुद नू भुले सांवला सा हरदम जपया तू।

जग तो निराली, पैलोग आखंड मैकू कलंदर, सगा मगर मैं अली दी गलीदा, पढ़ना क

किधरे नजर ना आवे। जो दिल तेरे इश्क ने कीता मेरे सोनिया मस्त, रुत बसंती अंदर माही जलवा आण विखाया, बुलबुल नहर हवावां फुल भी हो गए मस्त। रोज अवल में जाम जे पीता वादत मस्ती वाला, बूहे कंढा शाम सवेरे मैनू दिसदे मस्त। ओ ना डरदा दोजख बोलो ना लालच जन्नत दा रखे,

Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Magical Point 6.
1: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke din mein.

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
5: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
6: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6।